قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.

आइनी ज़रूरत आहे मुल्क में वध खां वध इंतज़ामी यूनिट ठाहिया वञनि। वफ़ाक़ी घरु वज़ीर बि चई रहियो आहे त नव सूबनि ते कम तेज़ी सां जारी आहे। सूबनि बाबति आइन वाज़ह आहे, केरु ग़लति फ़हमी जो शिकार न रहे। MQM जी क़यादत जेका ॿोली ॻाल्हाए थी उहा क़बूल करण जोॻी न आहे। उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जी अक्सरियत पाण खे सिंधी सम्झे थी। MQM लिसानी बुनियाद ते विरहाङे नफ़रत जी सियासत करे रही आहे। सिंध असेंबली नव सूबनि बाबति पंहिंजो फ़ैसिलो ठहराउ ज़रे ॾेई ॿुधाए चुकी आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जिलिना मेमण जो MQM अॻवाणनि जे प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रद अमल। शर्जिलिना मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत खे हथरादु कोठींदड़ MQM वारा पहिरियां पंहिंजो मेडिडेट साबित कनि। कराची खे भताखोरियूं ऐं ॿोरी बंदि लाशनि जी सियासत MQM ॾिनी। हाणे फितने फसाद उगोणनि ऐं नवे वारे ॾहाके जी सियासत चाहिनि था।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: नहीं है आवाज पास
0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बन
0: जगह पर
1: सिंध की आवाज
0: M88 नेटवर्क।
2: Once again, warm welcome back and good morning. Driving to a chance where you while driving, why? Because the speed chills but kills, and I don't want to see you on the lurch. And that's why I'm telling you, whenever you you are on the big way and you are going a long way, a long journey, so you have to take care of yourself as well, those people which is with you. And why? Because this is not only your life, there are many lives, they are with you, they are touching with you. That's why you have to take care of your life. Life is a wife. So be careful, and I hope you are enjoying with me, and I'm too. Okay, if you want to call me, if you want to message me, so dispatch me your name, your area, and your message, whatever you wanna write over there. And if you ये प्रोग्राम हुआ करता है हर मंगल की सुबह बिल्कुल 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और फिर मैं जुमेरात को भी आता हूँ सुबह 9 बजे से लेकर फिर 11 बजे तक, और फिर संडे की नाइट आता हूँ संडे फंडे के साथ, ठीक है ना। तो संडे की नाइट भी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप लोगों का दिमाग खाने के लिए आता हूँ। मेरे पास अच्छे अच्छे ट्रैक है, कॉलें आ रही है, इतनी कॉल है कि बस क्या बताऊँ कितनी कॉल है। और मैं चाहता हूँ कि यार आपकी कॉल भी ले लें, देखते हैं कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
2: अदा केर काटो बाबा
3: चाहे मजा कुर्बान अली खास के लिए बुलाया गोठा जी गुलाम खास के लिए अभी झंडो मरीना
2: अदा केड़ा आलन तबीयत किया खैर खैरियत दा प्रोग्राम सजो बुदो आया हाने ट्यून क्यों आ छोड़ो
3: बाबा प्रोग्राम सजो बुदूंगा शुरू हुआ नवी ऑडियो।
2: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह केड़ा आलन किया तो लगे प्रोग्राम
3: प्रोग्राम वीआईपी लगे दो आई तमाम वरी के हर बोली में गलाए दा यो मेरा तो
2: सिंधी बोली प्यारी बोली, सिंधी बोली प्यारी बोली, सिंधी बोली दिलवारी बोली।
3: कहीं बोलू का नहीं
2: गायो यार, बस इन्हें छड़े दे तू है माँ के बुदाय था जो को आलू हों दो आलू हो ना, जो जो को चाचे जो पुटरा हो केड़ी सब्जी आ
3: चाचे पुटे केड़ी सब्जी आ मुझे समझ में तो
2: कोशिश करे ना यार केतरी सब्जी टमाटो हो ना जो चाचे जो पुटरा हलो है तान जो सवाल जो जवाब मां सान लिखिया तो अगर तान जो सवाल जो जवाब सही हुंदो तपो मां के 100 जो इजी लोड कराएं जो ठीक आला
3: ठीक आ
2: 100
3: जो
2: चा तो हजार बा मोकली
3: भाई
2: अच्छा कातों दा गाला केड़े शहर
3: मो बाबा गो थाजी गुलाम खास के लिए लगी झंडो मरी मना उठा का कुर्बान अली खास के लिए मना डिस्ट्रिक्ट मना खेरी सर मीरपुर
2: खास। अच्छा मीरपुर खास, जबरदस्त यार जबरदस्त, थैंक यू सो मच अदा ता असा के कॉल कई। असा जो प्रोग्राम 11 बजे तायो तो जरूर बुझ जो ठीक है ना।
3: ठीक है आला कर देना यो कला नेक्स्ट कलाम जो को लाइन है नाने के
2: लिए जी जी जी जी
3: काठड़ी का गुलाम रसूल मरी अजीज सलाम खालिद लाश्यारी अजीज जरवार दे चिकू गुजर का सलाम सलाम।
2: ओके ब्रदर, ओके ब्रदर, ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच ऑल। और मैं तो जाता हूं कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ट्रैक आप लोगों को सुनाऊं कि आप हैरान हो जाएं। अजीज दी मेरी राजी, बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझे मुझसे हटाने की साजिश की है। तुम तमाशा समझते हो,
4: जो हमने कही
2: तुम तमाशा समझते हो, खुदा रा वो जिंदगी हमारी जो तुमने कभी की ही नहीं, मुझे वो मोहब्बत है तुमसे।

0: जल्दी जल्दी लेते हैं कॉल और बातें करते हैं बहुत सारी, क्योंकि फिर कॉलर जो है मुझसे नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से हमारे साथ? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे बंधु।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह सर, मैं हूँ राजगढ़ मीरपुर खास।
0: अच्छा, मीरपुर खास से मेरा दोस्त मुझे सुन रहा है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
1: अल्लाह पाक का शुक्र है सर।
0: अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जनाब? आज पहली दफा मुझे सुन रहे हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, तो कैसा लग रहा है? मेरी बुरी सी आवाज आपको कैसे लग रही है?
1: नहीं नहीं, आपकी ब्रीदिंग आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी और आपकी कंट्रोलिंग तो बहुत अच्छी।
0: अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगे? आज आज आज का सवाल सुना था आपने?
1: जी जी, मैंने सुबह से सुन रहा हूँ। वो सब्जी के ना आलू का कदम, वो एक मेरे ख्याल में टमाटर या गोभी है।
0: टमाटर है, एक मिनट में लिख लेता हूँ, टमाटर या गोभी। आपका नाम क्या है?
1: रंजन।
0: अच्छा रंजन, इंशाल्लाह मैं आखिर में बताऊंगा कि जो आलू का कजन होता है वो कौन सी सब्जी होती है। ठीक है
1: जी जी, कुछ दोस्त हैं
0: शामिल कर लें जल्दी जल्दी से, टाइम कम है, जल्दी करा।
1: जी जी, पहले तो आप आपके अली मुनवर, आपके मुस्तफा और जूनी के बरादरी, पूरी बरादरी, नाखा बरादरी।
0: ओके जनाब, ओके, बहुत ज्यादा शुक्रिया।

अच्छा बिल्कुल जनाब, थोड़ा सा बिल्कुल कमर्शियल ब्रेक में जो है 2 मिनट है, लेकिन कमर्शियल ब्रेक की जाने भी बढ़ेंगे। अच्छा इसके बाद आप लोग न्यूज भी सुनते हैं, न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। न्यूज के बाद फिर छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होता है, फिर हाजिर होऊंगा। और आपको पता है मैं आपका दिमाग खाने 2 घंटे के लिए आता हूँ, तो डोंट केयर। इंशाल्लाह मैं अभी चलूंगा न्यूज की जानिब, न्यूज की जानिब बढ़ेंगे, फिर आएंगे आपके लिए। कहीं भी नहीं जाएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे कहते हैं बूम बूम।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asi glow har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे
3: मीरपुर खास वाले और मीरपुर खास की आवाज GAFM 88
4: आवाज़ पहुंचे शहर मीरपुर खास में हिक दी हमारी मुफ्त चेस्ट आई फिफड़न जी बीमारियन जी कैंप तारीख 26 सितंबर 2026 छंछर जे दी है सुबह जो 9 वगे खा शाम 5 वगे ताई लगी रही आ है जे में शेख जैद अस्पताल लाहौर आई पाकिस्तान जे आला तालीमी इदारन मा तालीम याफ्ता मीरपुर खास डिवीजन जो वाहिद चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर गणेश मल खत्री MBBS DTCD MCPS पल्मोनोलॉजी TB कोरोना नमूनिया दमो पुरानी खंग बलगम में रत जो अचन नजलो जुकाम फिफड़न में जारो हवा या पानी जो भर जन या कैंसर मोटापे जे करे साहो सुमण में तकलीफ अई सिगरेट नोशी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो अई दवाओं पिण मुफ्त दिनियो विदियो नोट डॉक्टर साहब 28 सितंबर 2026 खा ओपीडी पिण शुरू कंदा एड्रेस माय डायग्नोस्टिक क्लिनिक वेजो माय लैब न्यू टाउन मीरपुर खास रابطे लाए 0324244932 7

0: वज़ीर-ए-आज़म मुख़्तसर वफ़द सां गॾु न्यूयॉर्क पहुची वियो। शहबाज शरीफ गैल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली जे 81वें इजलास में शिरकत कंदो। वज़ीर आज़म 25 सेप्टेम्बर ते ख़िताब में इलाइक़ाई ऐं आलमी सलामती जे तब्दील थींदड़ सूरताल जे हवाले सां पाकिस्तान जो मौक़िफ़ पेश कंदो। ॻाल्हियुनि सफ़ारतकारी ऐं तकरारनि जे पुरमुन हल जी अहमियत ते ज़ोर पिणु भरियो वेंदो। ईरान जो परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी न्यूयॉर्क पहुची वियो। अब्बास इराक़ी गॾियल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली जे इजलास में शिरकत कंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान बि अॼु न्यूयॉर्क पहुचंदो। गॾियल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली जे इजलास में शिरकत लाइ अमेरिका पारां सदर मसूद पज़ेशकियान, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी ऐं ईरानी वफ़द खे अमेरिका जो वीज़ा जारी कयो वियो।
1: नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क।

0: दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: में
2: सब खैर अला जैसों नंदो खैर कुसा बाबर साहब ठीक है
1: जबरदस्त लगो पियो ता के अक्सर याद कंदो आ
2: सही मेहरबानी ता जा कुरब ता जा थोरा सही
1: कातों ता गाल आयो दा
2: जलो गोट के मिश्री गोट मंगना रा मेरे बिस्क मंगना रा
1: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त किया लगे तो ता के प्रोग्राम
2: जबरदस्त लगे पियो मा हां रेडियो ऑन के वात आन तो ए प्रोग्राम कंदो तला कंदो खुश रंदो जी अस तकर के तरके मिलदे
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर कंदा से बार-बार कंदा से तांजे लाइंदा से हाने आज जे दी एस जुमेरात जे दी बोइंदा से इंशाल्लाह पो डेली भी इंदा से ठीक है ना दा
2: साईं कदी मेहरबानी बो खैर खुश
1: हाने माके ए बुदाय जेको सब्जी हुंदी है आलू आलू खादो ती कदी
2: आलू सही कोने दी सब्जी सही है देखे मानो का आलू में बीमारी थिंदी है
1: आलू में चाह थी ना गैस थिंदो आ
2: हां
1: अच्छा अच्छा ठीक
2: है सो से जा बडे आज बात तो के लेन ते वदी गलन वा मा के तमा का एकरी गाल पूछनी है
1: जी जी अदा जी
2: नाराज न थी जो सही
1: नाराज न थिंदा से गलत गाल कही तो मा ग्लव्स पहन मांजा बॉक्सिंग वाला पो मा को भी नाराज न थी जा पठान मानो आ गलत न बुदो आ
2: बेटा मानो या गाल करा तो मैं मुंजी गाल बुदनी
1: हां हां हां हां
2: तो
1: चैनल ते कम करना ना जो पाकिस्तान जे तमाम चैनल ते कम कयो आ ठीक

0: दादा
1: हा मां त जवाब मां के समझ में कुछ गाल बदन में आई मां ते
0: दा हा दिस मां 90 ते कम कयो आ मां 88 ते मां कम कयो मां ता जे गोट की कम कयो मां पेशावर कम कयो मां इस्लामाबाद कम कयो बस छड़ो कम कयो मां
1: सही है सही हला कंदो ता जे प्यारो आवाज त मानु ता के घुरांदा न प्यारो
0: आवाज गाल हाने समझो जोरी घुराइना दे आ हाने छो न इंदा से मोहब्बत आ हर के सा मोहब्बत आ सा जी त पो इंदा हु ना दा ठीक है ना दा टंग टंग करे तो न अच्छा ए बुधाय त आलू जो कजन जो चाचे जो पुट केड़ो आलू जो
1: बस आलू की गाल न कर बस आलू मारे छोड़
0: मन आलू खाई खाई तबाह थी सफा निकरो ही ना असा सिंधी कौम इन में नी निकरे
1: दोस्त शामिल कराने
0: हल जल्दी कर बा
1: यार दोस्त अलादर मार मोहम्मद अली खान पठान खान पटकेर अब्दुल्ला भंगवार गोरा भंगवार पोपट पिता की मोर पिताजी
0: हाँ
1: अलीगर खान मार ओके
0: ओके ओके ओके ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज दिस इज भंगवार हाय हाय।

0: बिल्कुल जनाब, बहुत ज्यादा शुक्रिया। महवेश हमें सुन रही है कराची से। हमें महवेश सुन रही है, कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी तरह प्रोग्राम, आप आई लव दिस प्रोग्राम। बहुत ज्यादा शुक्रिया महवेश। और सरदार हमें सुन रहे हैं, सरदार भाई कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है। उज़ैफा खान हमें पिशावर से सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, कहते हैं कि जबरदस्त प्रोग्राम है। उसामा हमें सुन रहे हैं पिशावर से, थैंक यू सो मच। सईद भाई हमें सुन रहे हैं सखर से, थैंक यू सो मच सईद भाई, बहुत ज्यादा शुक्रिया। जान सैद खान हमें सुन रहे हैं पिशावर से, थैंक यू सो मच। और उसके साथ इनायतुल्ला हमें सुन रहे हैं, इनायतुल्ला मंगी साहब हमें सुन रहे हैं सखर से, कहते हैं प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। माहीन हमें सुन रही है पिशावर से, माहीन बहुत ज्यादा शुक्रिया। रफीउल्ला हमें सुन रहे हैं बहुत ज्यादा शुक्रिया। ताबिश हमें सुन रहे सखर से, कहते हैं सलाम से। और नदीम भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं बहुत अच्छा। मुख्तियार भाई हमें सुन रहे हैं, मुख्तियारा हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ असमत काकर खान अभी सुन रहे, पुलिस वाला मेरा दोस्त है। और कहते हैं ज़ियारत खान मामा हमें सुन रहे, बहुत ज्यादा शुक्रिया। मुस्तकीम हमें सुन रहे, थैंक यू सो मच मुस्तकीम। सर नाम लूंगा अभी हमें सुन रहे, अच्छा इनायत हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और नाइला हमें सुन रही है, बहुत ज्यादा शुक्रिया। शगुफ्ता हमें सुन रही है, बहुत ज्यादा शुक्रिया। उमेरा हमें सुन रही है, शुक्रिया। मुबशर हमें सुन रही है, अफजाल खान सुमरू हमें सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा। राबिल हमें सुन रहे हैं,
1: यार सही नहीं नाम ले नहीं तो गुद्दी मारूंगा मैं तेरे को।
0: अच्छा गजाल हमें सुन रहे, सबाउन हमें सुन रहे, थैंक यू। हिदायत हमें सुन रहे, थैंक यू। और हिना हमें सुन रही है, बहुत ज्यादा शुक्रिया। हिना के साथ आयजा हमें सुन रही है, क्या यूनिवर्सिटी में हमें सुन रहे हैं। वाओ क्या बात है, यूनिवर्सिटी पढ़ा करें, सुना मुझे ना सुना करें, पढ़ा करें, अपना अपने काम से काम रखा करें। खान बहादुर हमें सुन रहे, थैंक यू। बुशरा हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया। बुशरा कैसी है, अपने खर्चे पे या डैड के खर्चे पे। मेरे नजीर भाई हमें सुन रहे, थैंक यू सो मच। आरिफ सुमरो हमें सुन रहे, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अवान खान हमें सुन रहे,
2: थक गया मैं जब सो गाँव दूर दूर तक, कोई बच्चा रोचा और वो सोता नहीं, तो माँ कहती है बच्चा है मुन्ना है बबलू, चुप हो जा चुप हो जा, वरना बबलू बम बम आ जाएगा। और बम बम आते हैं तो हवाएं तूफान में बदल जाती हैं।

0: थैंक यू सो मच सवामी का, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, लेते हैं कॉल, देखते हैं हमारे कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम। अच्छा क्या
1: चाहता
0: खैर है, तबीयत सही है?
1: खैर
0: नहीं जी जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम असांगे बुद्ध उता था
1: जी? सही पहले तो
0: पहले दफा किया लगे तो ता के मांजी आवाज किया लगे थी
1: प्रोग्राम सही मां सुटो
0: दा दा दा दा जी
1: प्रोग्राम तमाम
0: तमाम सुटो आ ता के सुटो तो लगे
1: जी सही।
0: अच्छा वडी मेहरबानी, वडी मेहरबानी। मुजो नालो छाए
1: सही? आज प्रोग्राम तो ना
0: तुजो नालो छाए?
1: निसार मां पिता भी
0: निसार अहमद पताफी। ना खबर है तुझे गोठ में आया हुआ मा दावत खाई हुई हुआ तुझे पताफियन के गोठ में
1: अलग आते भाई
0: यार है तुझे सरदार हो एकड़ो
1: मंतज।
0: हां यार गुड गुड गुड गुड गुड गुड बिल्कुल बड़ी टेबल है ये तो शुरू थी वही खत्म न पे दोस्त भी बीठा होया मां छे में आराने में चा क्या मां के वठी व्या साण गाड़ी में पो गाड़ी में चढ़ी व्या मां उन टाइम 90 घोटकी थे हुंदो याद याद आ ताके दोस्तन के भी शामिल करे वटे आलू जो कजन केड़ो सब्जी में केड़ो आए चाचे जो पुट वांगण उन जो कजन आ चाचे जो पुट आ
1: मता नहीं हुजे
0: मता हुजे मतलब
1: जी मत
0: हां मता मता मता ठीक है आदा दो खैर लगो पियो
1: खैर सही
0: हाल छुट्टी कराने ठीक है
1: जी सही
0: अल्लाह हाफिज। फासलों पर यकीन क्यों बहुत है अस्सलाम वालेकुम। चलो टाटा बाय बाय कह देते हैं और क्या कहना है भाई बात किया करें। मुझसे हर कोई वैसे बात नहीं कर सकता लेकिन कर लिया करें ठीक है ना। मैं असल मैंने ये नहीं कि मुझसे बात करनी से मैं डरावना हूँ थोड़ा दिखने में।
2: यार डरावना तो तू मुझे कहता है अपने आप को नहीं कहा कर यार।
0: वालेकुम अस्सलाम केयर कहता हूँ बाबा अताउल्ला केड़ा आलम तबीयत किया जबरदस्त जबरदस्त बड़ी मेहरबानी किया तो लगे प्रोग्राम अदा माशाल्लाह माशाल्लाह छा तांके न में प्रोग्राम में तांके सुठो लगयो आवाज सही लगयो मुंजो इंशाल्लाह जुमेरात जो भी बुद्धो मंगल जे दी भी बुद्धो अज जो जेको डी आए रात जो इतवार जे दी भी इंदम ठीक है बाबा केड़ो बंद करे तो मां के मैसेज तक कन्या पो
3: जी
0: केड़ो एफएम बंद थे तो मां के बुधाए जाए बाबा
3: मोरो
0: बंद थे तो 10 बजे
3: रात
0: में पुछा कर माओ ठीक है
3: सही सही
0: हाँ वड़ी मेहरबानी बुद्धा रहो ठीक है दा
3: सही सही दोस्तान है
0: दोस्तन के भी शामिल करे वटे आलू जो कजन केड़ो आ
3: टमाटो
0: हाँ यार बिल्कुल गलत सही आखिर में बुद्धा एकदम ठीक है
3: सही सही
0: दोस्तन के शामिल करे वटे हाँ
3: गुलजार
0: मुस्तफा वालेकुम।

0: Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam.
0: Who is there?
1: Kind dear, kehda haal hai?
0: Theek thaan, zabardast. Taan budhayo, kehda kaatho baba?
1: Aye mujhe qurban ali khas ke liye ko bulaya gotha ji gulam khas ke liye ek dando mari.
0: Mashallah, kehda haal hai? Tabiyat sahi hai, khush laga pyao.
1: Dua lagi bhai, Allah jaye sara na bahar bhi dua ka khush hai, pyare ho da.
0: Bilkul kiyan lage to program.
1: Program VIP lagi ko mast safa.
2: यार मां इनन सा न गलाए न पोंबा घणो गलाए न मां एतरो न गलाए सकदो आ
0: गलाए गलाए गलाए सन
2: सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम
1: तो कौन सो गंदो तो है ना वलीलो
2: यार एड़ी गाली न कंदो कर सही आवाज कर दो कर
1: ओ मासी वोदी आया चाहे मरी हुई
2: ओ यार मासी फुल्लो तो साजी मरी हुई यार बस दुआ कर
0: मासी ना है ना मासी भाई हली हुई मुझे ख्याल है काडे हली हुई काल चोकड़ी हुई

बिल्कुल जनाब, बहुत ज्यादा शुक्रिया तमामी का जिन्होंने ट्यून किया हुआ है। बिल्कुल GFM 88 नेटवर्क, तमाम का तमाम आठवां नेटवर्क पे हमारा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत ज्यादा शुक्रिया। और अगर कॉल करना चाहें 03 00 11 34 88

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: It's the skin beauty cream. In a mewajood vitamin E beads. I jadid micro beads formulo. Amaji skin ke banai nikhi ai chamakdar. Sirf mindi han me. Dark spots ke kare khatam. I diye kudrati asli glow. The skin beauty cream. Asli glow har diye josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
2: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अब सिर्फ टिंडीहन में डार्क स्पॉट्स एक स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग आई डी शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक आई निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्च ब्यूटी क्रीम अप्रा
4: हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

वक्त बहुत सारी चीजें जिंदगी में छीन लेता है। यहाँ पर शायर कहता है कि वक्त बहुत कुछ छीन लेता है, खैर मेरी तो सिर्फ मुस्कुराहट ही छीनी है उसने।

कहते हैं कि इसलिए तो जमाने में अजनबी हूँ मैं, इसलिए तो जमाने में अजनबी हूँ मैं कि फरिश्ते हैं सारे लोग, फरिश्ते हैं सारे लोग आदमी हूँ मैं। हाय हाय, बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटल चलाना है मुझे, लेकिन ये चल गया है कुछ और, डोंट वरी अबाउट दैट। और ऐसा करते हैं कि आपको सुनवाते हैं एक अच्छा सा ट्रैक और कॉल लेते हैं। कॉल इतनी आ रही है, इतनी आ रही है कि बस क्या बताऊं कितनी आ रही है, इसलिए कहता हूं कि कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल भी लेते हैं और मेरे पास एक अच्छा सा ट्रैक भी है, ट्रैक भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।

बिल्कुल जनाब, इस टाइम कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है और आपको पता है कि अगर ब्रेक ना हो तो हमारी जिंदगी में ब्रेक आ जाएगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं भी नहीं जाएगा, मेरा साथ दीजिएगा।

हमीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए एफएम 88 नेटवर्क।

Once again, warm welcome back. और बिल्कुल जनाब, बहुत ज्यादा शुक्रिया तमामी का जिन्होंने शुरू किया GFM 88 Seekers के साथ साथ जितने भी और साथी हैं, मुजाफात हैं, उन तमामी का बहुत ज्यादा शुक्रिया. और अक्सर फिर में ऐसा होता है कि प्रोग्राम जो है हमारा शुरू होता है और फिर ख़त्म हो जाता है. कभी कभार बंदा बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, लेकिन मैं भूलता नहीं हूँ, ठीक है ना. और आप लोगों को तो मैं बिल्कुल ही नहीं भूलता, क्योंकि मैसेजेस आए हैं, आई वांट इंक्लूड देम. और कुछ मैसेजेस मैं जो है फेसबुक पर भी आए हैं, कमेंट्स हैं, उन्हें भी मैं चाहूँगा कि मैं ज़रूर आप लोगों का कमेंट जो है वो रीड आउट कर लूँ, ठीक है ना. जैसे कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक हमें सुन रहे, कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका.

वो कहते हैं यहाँ पर हुज़ैफ हाफिज गुलाम मोहम्मद चंदबानी, हाफिज गुलाम मोहम्मद चंदबानी ने एक जॉक भेजा है और कहता है कि एक बहुत मोटी औरत साइकिल पे सवार थी, एक बहुत मोटी औरत साइकिल पर सवार थी और ये गाना गा रही थी, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।

0: और बच्चे ने कहा कि भाई, बच्चा उसको सामने से गुस्से में देखते हुए गुजरा और कहने लगा कि देखा है पहली बार हाथी साइकिल पे हाथी सवार। वाह जबरदस्त जी। हाफिज साहब आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, और मायरा हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया, और उमेमा हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया, काबिया खान हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया, सुफियान हमें सुन रहे हैं, फियोल्ला हमें सुन रहे हैं, ताबिश हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। हाय हाय इतने मैसेज है। अलनूर जनरल स्टोर वाले मेरे दोस्त सुन रहे हैं न्यू पेंट से, अता भाई थैंक यू सो मच, अता कैसे हैं, सलमान हमें सुन रहे हैं ज़बरदस्त, जैद खान हमें सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। और मेरे पास इतने अच्छे अच्छे ट्रैक हैं कि क्या बताऊँ, कितने अच्छे अच्छे ट्रैक हैं, और ट्रैक जो भी मैं आप लोगों के लिए प्ले करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, आज का क्वेश्चन हमने आपसे ये पूछा था, क्योंकि अभी बंद कर देते हैं इसको, सिस्टम को चेंज कर देते हैं, क्योंकि छुट्टी भी करनी है, टाटा बाय बाय भी कहना है आप लोगों से, मुझे कह दें मुनव्वर शहजाद, और प्रोग्राम मंगल के दिन ये होता है, सुबह मंगल और जुमेरात को सुबह आता हूँ और संडे को फिर रात को देर से आता हूँ, ठीक है ना बाबा। तो बात ये कि अच्छे अच्छे सॉन्ग भी सुनेंगे और बातें भी करेंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक अच्छा बेहतरीन ट्रैक हो जाए, और साथ में फिर आपसे छुट्टी भी लेंगे ना भाई, छुट्टी तो लेना हमारा फ़र्ज़ है, छुट्टी करेंगे और जाएंगे फिर आपको कहेंगे टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अच्छा सा ट्रैक आप लोगों की समातों की नजर करने जा रहा हूँ, और सुनिए इस ट्रैक को, मेरा साथ दीजिए। आखिर में फिर कहते हैं कि आज का जो सवाल था उसका जवाब ये कि आलू का जो कजन कचालू है ना यार, तुम समझते ही नहीं हो, आलू का कजन जो होता है चाचे का, तो आप लोग एक तो मैं आपको समझा के थक जाता हूँ, फिर भी आप समझते नहीं, ये गलत बात नहीं, समझ लिया करें, जान छुड़ा लिया करें,
1: फ्रीडम।
0: और मेरे पास एक जबरदस्त बेहतरीन सा ट्रैक है, चलें ट्रैक सुनते हैं, ट्रैक के बाद फिर आपसे छुट्टी भी चाहेंगे क्योंकि 11 बजने वाले। बहुत ज्यादा शुक्रिया तमामी का जिन्होंने मैसेज किया, जिन्होंने कॉल किए, जिन्होंने सिर्फ खामोशी से सुना, उन तमामी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह जुमेरात को सुबह में 9 बजे से लेकर ठीक 11 बजे तक वंस अगेन हाजिर होऊंगा जुमेरात को।

0: जानती नहीं हो सुधीर, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती है। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

थैंक यू सो मच. बस अपना ख्याल करें, अपने चाहने वालों का ख्याल करें, उन लोगों का भी ख्याल करें जिनका कोई नहीं होता ख्याल करने वाला. और आखिरी बात यह कहूँगा जाते जाते कि धोखा, धोखे की मिसाल एक बॉल की है, धोखे की मिसाल एक अंडे की शेप की है. धोखा घूम के आता है. कभी किसी को धोखा देने का सोचिएगा मत, क्योंकि धोखा जब आप देंगे तो धोखा आपके साथ ज़रूर होगा. ठीक है ना. कभी भी आप बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि यार मैंने तो उससे जो है ये धोखा दे के काम अपना निकाल लिया. याद रखें ऐसा आपको धोखा मिलेगा कि आप याद रखेंगे. इसीलिए कहता होता हूँ कि जो भी करें अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा सोचें. जबरदस्त दूसरे ट्रैक आप लोगों की समातों की नजर, लास्ट ट्रैक ऑफ द शो प्ले कर दिया है आप लोगों के लिए. और आखिर में दुआ कि या अल्लाह तू वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं, या अल्लाह तू वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं, बस हमें भी वैसा बना दे जैसा कि तू चाहता है. मुझे कहते हैं बुम बुम शहनाज, अब मुलाकातों की जुमेरात की सुबह इंशाल्लाह लजीज 9 बजे से लेकर ठीक 11 बजे तक दिमाग खाने आऊंगा आप लोगों का. मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम और आपके फीडबैक से मुझे अंदाजा हो गया. थैंक यू सो मच आल. और कहते हैं कि लव बिगेस्ट लव, और दिल से दिल को राह उठिए मोहतरम सामीन, एक दूसरे से प्यार कीजिए, मोहब्बतें फैलाइए, मोहब्बतें समेटिए. टेक केयर, अपना ख्याल कीजिएगा. और मुझे पता है कि आप लोग जो है वो अच्छा महसूस करेंगे. सो देयर यू गो, जबरदस्त ट्रैक. एंड आखिर में थैंक यू सो मच, हाफिज, टेक केयर पाकिस्तान, फायदाबाद.

0: चयो त पाकिस्तान ईरान सां सहकार खे हथी ॾियण लाइ पुरज़म आहे। कंबर जे इलाइक़े कुबो सैद खान भरिसां क़तल कयल नौजवान जे धड़ खां धार कयल मुंडी हथ गुज़िरियल ॾींहुं खॾ मां नौजवान मंज़ूर चांडियो जो सिसी धड़ खां धार थियल लाश मिलियो हो। नौजवान खे बलूचिस्तान जे इलाइक़े ओस्ता मोहम्मद मां अगवा करे क़तल कयो वियो। वारसनि मूजिब नौजवान खे बिरादरी जे माण्हुनि पुराणी दुश्मनीअ तां क़तल कयो आहे। कंदकोट में सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एस टी पी जे एहतजाजी रैली कारकुननि एस टी पी आफ़ीस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी एहतजाज कयो। अॻवाणनि चयो त सिंध धरती असांजी माउ आहे, सिंध खे टोड़ण वारी साज़िश पूरी थियण न ॾींदासीं। ऐं खानपुर भरिसां हथियारबंदनि जे ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खां फुरलुट मुसाफ़िरनि जो चवणु आहे त इंडस हाईवे ते रहीमाबाद लाड़ी वटि हथियारबंद बस मां लाहे लखे रुपया रोक रक़म मोबाइल फोन ऐं ॿियो सामान फुर करे विया आहिनि। पुलिस मुनमान बहाल कराइण में नाकाम बणिजी वई आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पंखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भरकर।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: जो आवाज GAFM 88 मीरपुर खास जो आवाज।
4: खुश खबरी, आपके अपने शहर मीरपुर खास में एक रोजा मुफ्त चेस्ट और फेफड़ों की बीमारियों का मुफ्त कैंप तारीख 26 सितंबर बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगाया जा रहा है, जिसमें शेख सेख अस्पताल लाहौर और पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों से तालीम और तरबियत याफ्ता मीरपुर खास के वाहिद चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर गणेश मल खत्री, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन MBBS, DTCD, MCPS, पल्मोनोलॉजी, TB, कोरोना, नमूनिया, दमा, पुरानी खांसी, बलगम में खून आना, बार बार नजला जुकाम, फेफड़ों में वर्म, फेफड़ों में हवा या पानी भरना, फेफड़ों का कैंसर, मोटापे की वजह से सांस या नींद में तकलीफ और सिगरेट नोशी से निजात, इन तमाम मसाइल वाले मरीजों का मुफ्त मुआयना और इलाज करेंगे और दवाएं भी मुफ्त देंगे। नोट, डॉक्टर साहब 28 सितंबर से OPD भी करेंगे। एड्रेस माई डायग्नोस्टिक क्लिनिक, बिल मुकाबिल माई लैब, न्यू टाउन, मीरपुर खास। मजीद मालूमात के लिए राबता नंबर 0324-2449-327।
5: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐं एवोकाडो अवां जी सेंस स्किन खे बणाए रेडियंट स्पार्कलिंग ऐं ॾिए शानदार मिरेकल ग्लो, कुदरती चमक ऐं निखार जो बहितरीन इंतखाब। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मीरपुर खास में डॉक्टर वात ऐं पेट मां रत जो अचणु, कब्ज़, बवासीर। अव्हां जे पंहिंजे शहर में मीरपुर खास में डॉक्टर मुसर्रत अब्बासी, MBBS, FCPS, मैदे ऐं जिगर जी बीमारियुनि जी माहिर, मैदे जी जलन, तेज़ाबियत या अल्सर, गले में मानी जी रुकावट, जिगर जी चर्बी, कारी ऐं फिर मां रत जो अचणु, कब्ज़, बवासीर, वज़न जो वधी वञणु, अहिड़नि तमाम बीमारियुनि वारे मरीज़नि जो मुआइनो ऐं इलाज कंदी आहे। OPD टाइम सूमर ऐं खमीस, सुबुह जो 10 वॻे खां मंझंदि ऐं 4:00, मंझंदि 3 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं। एड्रेस मैदा वो जिगर केयर, वेझो आगा खान लेबोरेटरी, अली मनी, मीरपुर खास। वधीक मालूमात लाइ एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान अब्बासी 0310-3844-883 मीरपुर खास। वधीक मालूमात लाइ एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद लेबोरेटरी, अली मेडिकेयर सेंटर, PM कॉलोनी, मीरपुर खास। वधीक मालूमात लाइ एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान अब्बासी 0310-3844-883।
7: दुनिया के ज्यादातर मालिक से पोलियो खात्मा और बदकिस्मती से ہمارا ملک بھی ان دو مداری ہم سب کی ہے. ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے. ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ان کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے. ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: टडो गुलाम हैदर वेझो परणे लारीअ जो घर मां फाओ लॻल लाश एतवारसनि जो सहुरनि ते क़तल करण जो इल्ज़ाम घोट जियो कोली में रवीना ज़ाल केवल कोली जो घर मां लाश मिलियो पीउ ऐं चाचे पारां मुड़ुस ऐं सहुरनि ते नारी खे तशद्दुद करे क़तल करण जो इल्ज़ाम जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कंबर जे इलाइक़े कुबो सैद खान भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल कयल नौजवान जे धड़ खां धार कयल सिसी हथ नौजवान मंज़ूर चांडियो जो गुज़िरियल ॾींहुं सिसी खां धार कयल लाश मिलियो हो कंदकोट में सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ़ एसटीपी जे एहतजाजी रैली कारकुननि एसटीपी ऑफिस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी एहतजाज कयो अॻवाड़नि चयो त सिंध धरती असांजी माउ आहे सिंध खे टोड़ण वारी साज़िश पूरी थियण न ॾींदासीं मदेजी में 2 महीना अॻु क़तल थियल नौजवान जे खून जो जरगो ज़रिए निबेरो इल्ज़ाम हेठि आयल धरती धुर ते 55 लख रुपया ॾंड मुक़ररु कुमारिया हाउस ते नजफ़ ख़ान जे सरपंची हेठि ओशाक जखरो जे क़तल जो जिरगो थियो क़तल जे इल्ज़ाम हेठि आयल जुणेजा शहर ऐं मंगरिया बिरादरी जे जवाबदारनि मथां 55 लख रुपया ॾंड लागू कयो वियो ओशाक जखरो जे खून जे बहाउ 25 लख रुपया ऐं नाक क़तल करण जा 25 लख रुपया चटी विधी वई धुरियूं मक़तूल जे वारसनि ॾे मेल खणी वेंदियूं ॾंड जी रक़म मिलण बाद मुतासिर धुर राज़ीनामो लिखी ॾींदी खैरपुर में शागिर्दियाणीअ खे मुबैना लज लुट वारो निशानो बणाईंदड़ जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ एहतजाज शागिर्दियाणी जे वारसनि ऐं शहरनि गाड़ी मोरी रोड खां रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो मुज़ाहिरीन मौजूदु पुलिस नियाणीअ खे लया लुट जो निशानो बणाईंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न करे रही आहे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे
4: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है.
5: सुनते रहो GFM 90.8.

तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

क्यों और कैसे जरूरी है. बिल्कुल जनाब, बहुत से वाली बातें हैं कि आप लोगों के साथ करनी है, लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है. तो बिल्कुल सर, अपना भी तारीफ करवाते हैं. सो लिसनर्स, प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, यू आर जे एंड यू डीजे सिद्रा मुस्कान. नाम तो सुना ही होगा. तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में. आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए चलिए जी, यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद, रेडी खेडी हो जाइए जरा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखने के लिए और खूबसूरत बनने के लिए. और इसी के साथ साथ जरा अपने हाल चाल बताते जाइए. सो डियर लिसनर्स, अंत कैफा हालत है, कैसे ही आपकी हालत है. उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे. तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना, वो खत्म हो चुकी है. फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है. आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं. तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले. और 2 घंटों में हम करेंगे आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें. और इन्नी शाली बातों में जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र तो होने ही वाला है. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए भाई. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. और कई मरतबा अगर आप किसी की स्किन देखें जो कि खराब हो चुकी हो, या फिर उसे जरूरत हो कोई अच्छा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की, तो आप उसे झट से बता सकेंगे भाई आपकी स्किन को नीड है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर किस तरह वर्क करते हैं इसके बारे में भी बातें की जाएंगी. और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी. ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए. आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं, तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए. आपके होंठों पर 440 उल्की संभालने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की संभाल लाते हैं. यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगा से प्रोग्राम कर लेते और आगा से प्रोग्राम करेंगे जनाब एक बहुत ही प्यारे से कलाम के साथ. तो बहुत ही खूबसूरत सा कलाम जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है. तो आइए जरा पहले, सबसे पहले हम कलाम को सुन लेते. कलाम सुनने के बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं, तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है. और आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए.

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: अभी तो क्या बात है, आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डीज कैन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए इंतजाम, चाहे आप मर्द हज़रात हैं चाहे आप ख़वातीन हैं, आप सारे लोग ही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। ये दो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप परचेज करना चाहें तो बेशक कीजिए जनाब, इस्तेमाल कीजिए और जरा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जाइए, क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताऊंगी ना, ये आप लोगों की खूबसूरती में इस तरह से काम करेंगे कि भाई आप कहेंगे हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, हम पहले सिदराबाजी की बात क्यों नहीं मान रहे थे। तो खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए और वहां से मालूमात लीजिए और परचेज कीजिए, और अगर नहीं भी मिल रहे तो उसका हल भी आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन साथ साथ जो आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, तो उसकी जाने भी सराह जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों को तरीकेकार भी बताते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं। ओके जी, तो सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आज आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता। हाँ जी, वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो सारे जानवर ही आवाज निकाल रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी दुनिया में जानवर पाया जाता है जो कोई भी आवाज नहीं निकाल सकता। तो आप मुझे बताएं वो कौन सा जानवर होने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं, या फिर आप घुड़ने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि हमें चोरी चोरी चुपके चुपके से सुनने वाले लिसनर्स, तो ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आप आइए पेज के ऊपर, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। बिल्कुल ना, पोस्ट को लाइक और शेयर करना भी आप ही लोगों का काम होता है, तो बस सिर्फ कमेंट कर देना काफी नहीं होता, पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है जी। ये तीनों काम कीजिए, फिर सुकून से बैठ जाइए और प्रोग्राम को एंजॉय करते रहिए। और इसी के साथ साथ मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता। और इसी के साथ साथ 8881 फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस जो कि मुझे मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले हमें फरवा गुल ने ज्वाइन किया है, कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आपकी तबीयत कैसी, होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल। यस आई एम गुड, आप बताएं कैसी। और कहती है कि आप ही अर्ज किया है, टूटा हुआ दिल सबको नजर नहीं आता मगर दर्द हर सांस में होता है। क्या बात है जी, बढ़िया हो गया। और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद, कहते हैं कि आओ तारीख हमें गोली दस, तू तारीख हमें गोली दे, आओ किताब थी मिलंदस, तू ख्यालन में गोली दे, आओ ख्वाब थी मिलंदस, माँ को हुसन जो शहजादो तो नाहा पर तू गुलाब में गोली दे, आओ गुलाब थी मिलंदस। वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मदर, इतनी अदा चालाए खुशायो सब चाक स्लेट कला मस्जिद डबे अजा भी अच्छी वयासी प्रोग्राम तो लाजवाब आई हमेशा जिया तवा वांगे, थैंक यू वेरी मच, प्यारा बात आज मोहब्बत वन प्रोग्राम बुध पाया आई पोस्ट के लाइक शेयर के ना हलो। और कहते अदा तो अच्छी वो अदा बिल्कुल अच्छी वो तुम अच्छी स्टार्टिंग में गलत अफवाहों न फैलाइंदा कहो अल्लाह सही डोर दींदो अथव। अखलाक भाई हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, हेलो अखलाक भाई, हजार खान जतोई भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू यू। और हमारे साथ ही नजर मोहम्मद भट्टी भाई, वालेकुम अस्सलाम एंड मौला अली सलाम अदर, आप हमें सुन रहे हैं कहाँ से नजर मोहम्मद भट्टी भाई, मटियारी से सुन रहे हो, ओके कहते हैं बेस्ट आपकी आवाज, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी बेस्ट है, आप परचेज कीजिए मटियारी में आपको मिल जाएगी आराम से। और मोहम्मद जमान भाई हमें सुन रहे हैं, मोहम्मद जमान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम कहते हैं। साजिद अली कहते हैं कि दिल अमीर था पर मुकद्दर गरीब था, हम अच्छे थे लेकिन बुरा नसीब था, कोशिश करके भी कुछ ना कर सके हम, घर भी जलता रहा और समंदर भी करीब था। सदरा मुस्कान के फहाल प्रोग्राम में शामिल आज हूँ, बहुत शुक्रिया जी आपको, वेलकम कहते हैं थैंक यू के साथ। और रशीद कोसो भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, वालेकुम अस्सलाम रशीद भाई, कैसे हैं ठीक ठाक है। और मोहम्मद जमान भाई गुड आफ्टरनून। और अबू हनीफ अल बलोची लिखते हैं कि कैसा हो कि हम दोनों मिलकर सितारों से घिरे हुए चांद को देखे और मैं तुम्हें ये बात बताने में कामयाब हो जाऊं, तुम्हारा चेहरा इस चांद से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है चांद खूबसूरत है मगर आप जितना हसीन थोड़ी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू. डे स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है वैसे ये, आप भी इस्तेमाल कीजिए, आप भी खूबसूरत हो जाइए. फैसल अहमद आनी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. अली रज़ा लगारी हमें सुन रहे, कहते हैं गोठ जाम खान लगारी से अली रज़ा लगारी, वालेकुम अस्सलाम. सिस्टर आप कैसी हैं, शो तमाम नाई से. सांग चोड़ी है जो चंड खान चिट्टो आए मुंजो पिरी. अच्छा मां ॾिसां थी बिल्कुल इहो तव्हांजो गानो हलाइण जी कोशिश कंदासीं. ऐं तव्हां डेडिकेशन सेंड कई आहे अज़र लगारी, आकिब लगारी, इमाम बख्श खोखर, आरजी गुलाम मुस्तफ़ा टालपुर, खालिक लाशारी, अल्लाह बचायो. और सिस्टर सिद्रा आपकी डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम यूज कर रहे हैं, तमाम अच्छी है सिस्टर, थैंक्स. ओके वेरी नाइस. डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सारे लोग ही यूज कर सकते हैं, जैसे भाई देखें अली रज़ा भाई ने बताया कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत ही अच्छी क्रीम है, तो आप सारे इस्तेमाल कीजिए. अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूम लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहां कहां पर अवेलेबल हो चुकी है. अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि इन्नी सारी बातें ये कितनी सारी होती, जितनी मैं प्रोग्राम में करती हूं उनको इन्नी सारी बातें बोलते. हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मेरे हाथों की लकीरों में ये ऐब है मौसिन, मैं जैसे हाथ मिला लूं वो मेरा नहीं रहता. वालेकुम अस्सलाम मुस्कान. ये कॉपी सॉन्ग ये शमन का बिल्कुल इनके हलाए वठूं साथ, थैंक यू तवां सां सगट मौजूद आयो. हनीफ बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं, हाय. मौजम चांदी हमें सुन रहे हैं, ओके मौजम भाई आपको भी वेलकम हो गया. अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आबाद से प्रोग्राम पसंद है आपको, थैंक यू. बतूल आ चुकी हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, आपकी गुस्से वाली दोस्त आई एम बतूल फ्रॉम मटियारी से आप हमारा शो सुन रही, कहती कल फिर सॉन्ग नहीं लगाया आपने, दिल भी नहीं करता आपसे गुस्सा करूं क्योंकि आपकी आवाज हमें और पूरे घर वालों को बहुत मीठी लगती है. सॉन्ग प्लीज मां ॾिसां थी, गानो तव्हां थोरो मूंखे समझणो पवंदो छो त हिन जो जेको तव्हां लिखियो आहे न मां समझी वठां थी, अगरि मूंखे मिलियो त तव्हांजे लाइ हलाए वठूं था, ठीकु आहे. न त कोशिशि कंदा कयो अगरि कोई ॾुखियो गानो फरमाइश कयो त हुनजी लिंक मूंखे काइंडली तव्हां शेयर करे छॾींदा कयो. चलो पोइ बि तव्हांजी फरमाइशन खे हलाइण जी फुल कोशिश कयूं था. ऐं तव्हां मूंखे ॿुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो कोन, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ जेको आहे न तव्हांजे ख़ूबसूरती में चार चंड लॻाइण वारो अथव. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु तव्हां हर कोई माण्हू करे सघे थो, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे लाइ मोहम्मद ज़मान भाई कहते हैं हमारे रंग डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइण खे बाद पता चलेंगे. बिल्कुलु जी, तव्हांजो रंग जेको आहे न दफ़ा निखिरजी ईंदो ऐं तव्हां एॾा सुहिणा थी वेंदा, माण्हू तव्हांखां बार बार पुछंदा, लॻातार पुछंदा, ॿुधायो त इहा ख़ूबसूरती तव्हां केॾी काॾां मिली आहे. ऐं तव्हां हुननि खे ॿुधाइजो बाबा हीअ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे. सिराज अहमद जतोई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम. सऊदी अरबिया से आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया, के साथ आपको वेलकम कहा जाता है. इसी के साथ साथ आप लोग फीडबैक जरा शेयर करते जाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा मुझे बताते जाइए, कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, कहां कहां पर अभी अवेलेबल करानी बाकी रहती है और कहां कहां पर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं. तो आप भी बातें कीजिए, हम भी बातें करेंगे, ये सिलसिला पूरे 3 बजे तक जारी और सारी रहेगा. आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और हमारा साथ देते जाइए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by Agar Khubsurti Chahiye. Acne and scars reduce karke skin ko banaye radiant, sparkling aur de shandar miracle glow Arch Beauty Cream.
2: It's time to commercial break.
3: Kadi wari

हर कोई डे स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है और आपकी स्किन किसी भी टोन की हर स्किन के ऊपर आप डी स्किन का ब्यूटी क्रीम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात आप लोगों को बता दे चलूं जरा कि जो कि मुझे बड़ी कमाल की लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो जो आपकी स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं बिल्कुल उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। तो इसका फार्मूला जो है ना वो मेडिकेटेड फार्मूला है, तो ये भी टेंशन दूर हो गई कि भाई आप अपनी सेंसिटिव स्किन के ऊपर लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला मतलब ये कि भाई ये एक नाइट क्रीम तो है, बजाय नाइट क्रीम है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, आपने कोई महंगी सी स्किन ट्रीटमेंट ले ली हो। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा अरबुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कुल मिलाकर आप लोगों की खूबसूरती पे चार चांद लगाने का काम करते हैं। और ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, इसका ये काम होता है कि भाई पूरे पाकिस्तान में आप जरा रिसर्च करेंगे या फिर आप जानेंगे ना, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स ऐड किए गए हैं। और ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स होते हैं इनका ये काम होता है कि भाई अगर आपने देखा होगा ना बहुत सी खवातीन जो कि महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं, तो उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि उनके जो फेशियल के अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन की एडिशन की गई होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं भाई आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं कि आप महंगे से फेशियल कराएं या फिर फेशियल कराने में टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, आप चाहते हैं बस कोई ऐसा सा प्रोडक्ट हमें बता दे जो हम लगाएं और हमें चुटकियों में निखार मिल जाए, तो बिल्कुल आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाजिर खिदमत है जनाब। आपके खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। आप हर टाइम लगा सकते हैं, यानी कि आप ऐसा है कि आप सारे स्किन के ऊपर इस्तेमाल करें, सारी स्किन के मतलब जो आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई, कॉम्बिनेशन टाइप हो गई, ऑयली हो गई, ड्राई हो गई, नॉर्मल हो गई, तो हर स्किन के ऊपर आप आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन का यूज करने के फौरन बाद ही जो है ना आप लोगों को रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए अच्छे से मुनासिब से पैसों के अंदर, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज जरूर करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल जो है ना वो आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन फेस वॉश तो लाजमी लीजिए, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये भाई इतना कमाल का एक फेस वॉश तैयार किया गया है जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम का जो है ना वो एडिशन की गई है। और हाइलोरोनिक सीरम एडम जो है ना इसके अंदर, तो उसका ये फायदा आपको मिलेगा कि भाई आपकी स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी, आपकी स्किन डीपली क्लीन रहेगी, आपकी स्किन जो है ना वो हमेशा ग्लो करती रहेगी। तो अगर आप भी कोई अच्छा सा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा सा फेस वॉश इस्तेमाल करने वाले हैं, तो डी स्किन फेस वॉश का यूज आप लोग जरूर करके देखिएगा। और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये भाई आपकी खूबसूरती के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को निखारता है, आपके चेहरे की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। और आप अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर डी स्किन का फेस वॉश ऐड कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए कि आपकी जो आधी जिंदगी की प्रॉब्लम्स है ना स्किन से रिलेटेड वो सारी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट हमने तैयार किया है जो कि लगाते ही साथ ही आपकी खूबसूरती में आए हाय क्या ही इजाफा आ जाता है। और अगर आप चाहते हैं भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, हम क्या कर सकते हैं, कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, तो इसका हल भी हमारे पास मौजूद है। आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, बस ऐसा कीजिए जो नंबर्स अभी आप लोगों को बताऊंगी ना उन नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए, और रابطہ करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25-970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309 बुड़ी 332 73-84-2
309 ही नंबर साइन बाबा अगर हिकड़ो बंद हो जे हिकड़ो रिसीव नथी ता बे ते कॉल करे सगो था बे ते मैसेज करे सगो था आई हिक न हिकु त तवा के जरूर रिस्पांस दिंदो तवा उन के बुधायो त किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम किथे किथे डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल अन्या ते कोन थियो है त हु अवेलेबल कराए छडीना आई तवा जले आसानी थी वेंदी पो ता वन्यो बस ता वठी आई आराम सा अचो इस्तेमाल कयो आई पाजे खूबसूरती जो ख्याल रखो तो चाहे या मर्द हजरात हैं चाहे या खवातीन हैं हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा हासिल कर सकता है क्योंकि भाई इतना कमाल का प्रोडक्ट जब आपके पास मौजूद है तो उसे हाथ से मत जाने दीजिए इस्तेमाल करके देखिए यकीनन आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए हसीन बनते जाइए और हमें बताइए कितने सारे लोग हैं जिन्होंने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लिया है और कहां कहां पर अभी अवेलेबल कराने बाकी है ये भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए बाकी आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया आप लोग पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए और यहां पर आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया प्रोग्राम के अंदर कि वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता हां जी बिल्कुल आपने सही सुना वो कौन सा जानवर है जो कोई भी आवाज नहीं निकाल सकता आपने इस सवाल का जवाब देना है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाना है अगर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो जनाब क्या बात है ये आपकी मोहब्बतें होती हैं बाकी अगर आप हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर देते हैं तो ये बहुत ज्यादा डबल वाली मेहरबानियां हो जाती हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए आप कहां कहां से हमें सुन रहे हैं और कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराने बाकी है मेरी जान तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए खूबसूरतियों को जरा वेलकम कीजिए और हमेशा के लिए हसीन और खूबसूरत होते जाइए अच्छा आज आप लोगों के ऐसे कमेंट्स की तो बारिश हो रही है भाई बारिश हो रही है क्या बात है मैं जरा कोशिश करूंगी जल्दी से कमेंट्स पढ़ते जाएं ताकि ऐसा हो कि तकरीबन सब लोगों के कमेंट्स शामिल प्रोग्राम होते रहे और यहां पर हाफिज गुलाम मोहम्मद सांभल भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे भाई को आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है कहते हैं प्रोग्राम के बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छे रखती हैं आप और पसंद आते हैं मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को लिसनर्स को सलाम वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई आपको वेलकम कहा जाता है और अलीशा क्वीन हमारे साथ है अलीशा क्वीन कहती हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी है थैंक यू वेरी मच अलीशा क्वीन और इनके अलावा सिराज अहमद जतोई हमारे साथ हैं आपको भी वेलकम कहते हैं और मोहम्मद जमान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया हिदायतुल्ला कहते हैं कि कौन कहता है पाकिस्तानी ड्रामे बस उस दिन मैंने इसी के बारे में बात कर दी थी छोड़ दें इस चीज को अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून माय फेवरेट आज चंदा जानी कैसी हो मैं ठीक हूँ तुम बताओ कैसी हो और निदड़ी कहती है कि हेलो मेरी प्यारी जानी पानी शोना मोना क्यूटी स्वीटी ओपा बाबू जाना जाना शोना और अला शाह सीधा सीधा हेलो बोलो ना और फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी बढ़िया हो गया साजिद अली हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम निदली कहती है कि आज इतनी पोइट्री सेंड की है सबने चलो मैं भी करती हूँ करो करो बाबा करो करो और सहारो अली रिंद बलोच हमारे साथ है भाईजान आपको भी वेलकम हो गया अलीशा कहती है आपकी आवाज बहुत अच्छी है थैंक यू वेरी मच अलीशा और निदली कहती है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आकर हमें ये सिखा जाते हैं कि हर किसी से दिल लगाना जरूरी नहीं होता कभी कभी इंसान सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसे समझ ले छोड़ कर ना जाए खामोश दर्द और गहरी यादें क्या बातें अच्छा हाफिज गुलाम अमन सांबल भाई लिखते हैं कि रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं कभी हद से ज्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर फर्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को अच्छा हजार भाई कहते हैं कि सिस्टर आपका शो सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है अल्लाह जाए विदा अलीशा कहती हैं कि जरूरत ई न पई कंहिंखे आज़माइण जी वक्त सां गॾु सभई पंहिंजा रंग ॾेखारी विया हक़ीक़त भाई सोनो मुंहिंजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे थो तव्हां कयो पिया कोन ॿुधायो त सही ख़बर त पवे परवा गुल तांचो मोबतवान प्रोग्राम बुधो पया फहीम भाई कहते हैं जब तक आप शो को लाइक नहीं करती तब तक हमें शो भाई थोड़ा तो सबर कर लिया करें प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया करें क्या मतलब साना पटियामा
अच्छा दर्द दिल कहती हैं कि वो मकाम शिकवे का होता है वही मकाम शुक्र का भी होता है लेकिन हम उस मकाम पर शिकवा जल्दी और शुक्र देर से अदा करते हैं हर बात में खैर ढूंढा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपनाएं बिल्कुल जी आपने सही कहा मुख्तार अली लाशारी भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम नज़ीर कोसो भाई हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया निदड़ी लिखती हैं कि ओ माय हबीबी माय हयाती माय उमरी अब इसका मतलब सुनो माय हबीबी मतलब मेरा प्यार माय हयाती मतलब मेरी जिंदगी माय उमरी मतलब हमेशा उसे प्यार करेंगे जिसे प्यार करते हैं

गरीब के बिल्कुल साव आहे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे खूबसूरती में चार चंड लॻाइण जो कम करे रही आहे सो तव्हां बाबा पंहिंजे चेहरे जो ख़्यालु छो न रखी रहिया आहियो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ाई ऐं चिकनो चिकनो बणाए छॾींदी अगरि तव्हां पंहिंजी स्किन सां रिलेटेड परेशान आहियो तव्हांखे ख़बर नथी पए त कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइणु घुरिजे कहिड़ो प्रोडक्ट असांजी स्किन जे लाइ बहितर रहंदो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ट्राए करे ॾिसो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ा वी आई पी बणाए छॾींदी ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि मूंखे तमामु घणी पसंदि आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकु मेडिकेटेड फार्मूलो आहे यानी कि कंहिं जी बि स्किन खे कोई बि नुक़सान न पहुचंदो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां आराम सां हर स्किन जे मथां अप्लाई करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द आहियो ख़वातीन आहियो हर कोई लॻाए सघे थो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो बाबा सुहिणा सुहिणा थी वञे

अच्छा भाई, सबने टॉपिक का जवाब बता दिया है, क्या बात है जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, होशियार हो चुके हैं। इंतजार भाई हमारे साथ, इंतजार भाई वालेकुम अस्सलाम, आप भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और नाजिक अली हमें सुन रहे हैं, कहते हैं गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तमाम प्रोग्राम जो अच्छा टॉपिक है फॉलो करो, सही सही। वासु भाई हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम वासु भाई, ठीक ठाक है, खुश बात। अच्छा जैन अली कहते हैं कि नहीं मिला है कोई तुस्सा आज तक मुझको, फिर ये सितम अलग है कि मिला तो तू भी नहीं। वाह वाह वाह वाह। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि दादा मैडम कह रही है डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है। वही तो जैसो मैडम इस्तेमाल करी तो उनके पसंद अच्छी वही, यानी तहां भी इस्तेमाल कर तहां की भी दाढ़ी पसंद अच्छी वेंदी। अच्छा पोस्ट के लाइक कयो था वा? कौन कयो था वा? या सिर्फ कमेंट जो वस्कार हुआ है? जाए बदा कसम दे।

लश पर से सोनो मुंजो आई सफा लश सोनो मुंजो आई सोनो लश आहे बाबा छो त सोनो जेको आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे पयो ऐं तव्हां बि अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया त तव्हां बि लश पश थी वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तव्हांखे सफ़ा ईअं सोनो ख़ूबसूरत ऐं प्यारो प्यारो बणाए छॾींदो डी स्किन ब्यूटी क्रीम त आहे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो डी स्किन जो फेस वॉश लॻायो ऐं हमेशह जे लाइ सुहिणा थी वञो अच्छा कुझु माण्हू वरी इहो सोचींदा आहिनि त बाबा असां क्रीम हणूं था पर जॾहिं असां क्रीम हणणु वरी बंदि करे छॾींदासीं त छा जेका ख़ूबसूरती असांखे मिली आहे उहा ख़तमु थी वेंदी अरे बाबा केरु थो चवे ख़तमु थींदी जेका तव्हांखे मिली वई ख़ूबसूरती तव्हांजी आहे तव्हां सां हमेशह गॾु रहंदी सो इन टेंशन जी वजह सां तव्हां अगरि प्रोडक्ट नथा इस्तेमालु कयो कयो बाबा कयो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे कोई नुक़सान आहे तव्हां सिर्फ़ु ख़ूबसूरत थींदा ऐं ख़ूबसूरती तव्हांजे दरमियान सिर्फ़ु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ासिलो आहे हुन फ़ासिले खे तइ कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो

जी ओके फहद भाई कहते हैं कि हमने चेहरों को सच समझा लो किरदार छुपा कर मिलते हैं वाह वाह वासु भाई मोहब्बतों तांजो प्रोग्राम बुधो पया नाज़िक कहते हैं दी सदरा मेहरबानी करे असांखे पंहिंजी ओरिजिनल वॉइस में फैज़ अली जो कलाम बुधायो दिल बच बच छा अच्छा हाणे गाल समझो आई एम नॉट सिंगर यो तो मड़े ट्रेजेडी करे गाईंदी है अच्छा नजीबुल्ला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम मुगल उमरानी चाचा तुम्हां एतरा कमेंट्स भला कया नहीं हुए भी स्टिकर मोकलिया था थोड़ो रहम कयो बाबा मानन ते सालार अली हमें सुन रहे हैं सालार को आपका अच्छा सालार बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं ओके हजार भाई कहते हैं कि तुम्हारी हर बात पर मुझे एतबार है मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है मुश्किल वक्तों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे हर कदम पर मेरा हाथ होगा परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करेंगे मिलकर तुम्हारा हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ ये बात याद रखना वाह सही

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप काइंडली पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए. बाकी आप लोगों के जो फीडबैक्स हैं वो शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे. और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी हमारी लिसनर हमारे साथ मौजूद है. वो बड़ी भाई प्यार से और शौक से हमारा प्रोग्राम सुनती है और वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश भी यूज करती है. और भाई एक खत्म हो जाता है तो वो जाकर दूसरा परचेज कराती है. और ये हमारे साथ मौजूद है आयशा मेमन. आयशा मेमन हमारी बहुत ही प्यारी और सुंदर सी लिसनर है. अल्लाह पाक आपको खुश रखे आयशा. आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे और बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद. रेगुलर आप हमारी मतलब लिसनर भी हैं और आप हमारा प्रोडक्ट भी परचेज करती हैं. सो थैंक यू सो मच आयशा. आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुनती हैं, ढेर सारा प्यार आपके लिए. और इसी के साथ साथ ऐसे ही प्रोग्राम को पसंद करती रहे और शामले प्रोग्राम होती रहे. अच्छा और हमारे साथ हमारी फजली भी प्रोग्राम में मौजूद है. फजली आपको भी वेलकम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम के साथ. और साथ साथ ये हमारे साथ जी मौजूद है इमदाद जतोई.

अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्ला जतोई, फारूक हैदर। जतोई भाइयों को वेलकम कहते हैं। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला महर भाईजान जो हैं ये भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अब्दुल्ला भाईजान बहुत बढ़िया ऐसे ही इस्तेमाल करते रहिए। और शहर दादू खां इमदाद अली जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई और किफायतुल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई, भावनजू मोबतुआ तां प्रोग्राम बुधो पया इन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल भी कयो पया। ये हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम भाऊ। अब हेल्थ कैसी है? ठीक है, बस ये पूछने के लिए मैसेज किया। ख्याल रखिए अपना, ओके, और दवाई टाइम से।

भाई का स्टाइल है। मुनव्वर भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अताउल्ला मरी हमारे साथ विलेज रमजान मरी मीरपुर खास से। ओके क्या बात है, मीरपुर खास वाले लोगों का भाई क्या कहना, वो बड़े हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बड़ी मोहब्बतों से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। बाकी मानो काथे आए बाबा बुधायो हाल हवाल।

Bye, Rosona, Rosona. रुठल भला नायो लगंदा किलो भोग मस्ती मजाक में रंदा कयो जिंदगी डाढ़ी खूबसूरत आहे खूबसूरत तरीके से जिंदगी के एंजॉय करना कयो ताई पाने के खूबसूरत बनायो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल के तां सा के बुदू पया तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थिया कोन मूंखे इहो बि ज़रूर ॿुधाए जो जे ख़बर पई दिलि चाहे हुजे त बाबा हा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था

भाई रसो न रसो न रुठल भला नायो लगंदा किलो भोग मस्ती मजाक में रहंदा कयो जिंदगी दाढ़ी खूबसूरत आहे खूबसूरत तरीके से जिंदगी के एंजॉय कंदा कयो आई पाण के खूबसूरत बनायो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बतूल मेमन हमारे साथ ही बतूल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ही आपका गाना लगाते हैं जी मुझे मिल गया है आपका गाना और फहीम भाई कहते हैं थोड़ा थोड़ा शर्मीला है वाकई वाकई और नजर मोहम्मद भट्टी भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है सैफुल्ला कोसो भाई हमें सुन रहे थे शो कहाँ से हो रहा है शो जी हो रहा है लाड़काना से बाकी हमारे साथ सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी मेहरापुर मातली नूरियाबाद ये सारे लोग मौजूद है सारे सिटीज में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है तो सबको वेलकम हो गया और निदड़ी कहती है कि मतलब ये वॉइस तुम्हारी फेक है मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है अच्छा हबीबुल्ला थेबू भाई वालेकुम अस्सलाम मुख्तियार लाशारी भाई के थे आज के सवाल का जवाब है ओके अली रजा लगारी भाई शमन का गाना सुनाते हैं थोड़ा सब्र कीजिए और सर इरफान हमारे साथ मौजूद है महर इरफान सियाल साहब कहते हैं नाइस होस्टिंग मैम आज थैंक यू वेरी मच सर वेलकम सर अनवर भाई कहते हैं कि तुम्हारी आवाज में शायरी सुठी लगंदी आहे बाकी शायरी जा मौजू उहे कम त शायरन जो आहे असां केड़ा खुद शायर आयो बाकी शायर जाने ऐं शायरी जाने ऐं शायर जाने सही सही हाणे गाल समझ में आई और हनीफ अलबलोची कहते हैं कि उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मौसिन उसे होते हैं भला ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मौसिन याद के दश्त में फरता हूँ मैं नंगे पाऊँ आके देख पाओ के छाले मौसिन क्या बात है मौसिन को बोलो देश के ब्यूटी क्रीम लगा ले और रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक है प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं डी स्किन मेरे शहर में नहीं मिल रही है अवेलेबल करा दो आप भी गिफ्ट नहीं भेजती रमजान मरी आपका भाई रमजान भाई आप कहां से हमें सुन रहे हैं बताएं तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा देते हैं ठीक है अच्छा मुजाहिद मलिक कहते हैं सिडो मेरी MP3 खराब हो गई है मैं आपका शो मोबाइल पे सुन रहा हूँ प्लीज आप दुआ करें MP3 बन जाए ताकि मैं आपको लंबी आवाज में सुनूं कम आवाज में मजा नहीं आता आपके शो का जी जी आपकी MP3 बन जाएगी और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं अच्छा रुखसार मरी भी हमें सुन रही है रुखसार मरी बहुत शुक्रिया थैंक यू आप हमारे साथ हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है नहीं बताइएगा अली डिना भाई हमें कश्मीर से सुन रहे हैं और मुलायर अमीर बख्श हमें सुन रहे हैं

कोशिश कया है पानी प्लेलिस्ट जेका है वो सिंधी गानन सा जरा भरी वने सो सिंधी गाना आज जी प्लेलिस्ट में बुधना सी खबरदार के उर्दू गाने जी फरमाइश की

सोन त खैर तव्हां वठो जॾहिं पर तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो बाबा उनखे चवेसि त बाबा हाणे जो हाणी आणे ॾे मूंखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण स्टार्ट कयो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ सफ़ा घणी फ़ाइदेमंद आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस करे तव्हां सफ़ा सोणा सोणा थी वेंदा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां हर कोई इस्तेमालु करे दिल भी आप टॉपिक का जवाब दे चुकी हैं. ओके जी ओके. ताले मरी भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. ताले भाई आपको वेलकम कहते हैं. ओके जी. रहमान अली शंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है. नजर मोहम्मद भट्टी भाई वालेकुम अस्सलाम. मटियारी खान तुम जो प्रोग्राम बुध पाया. अच्छा अदो चए तो अदा सर खालिद जी शादी आहे छा अड़ा गाना प्ले कया थई? शादी आ तो घोट नजर को हा चाचे जी शादी कराए था भला इन में शायस. एसन अली बुक्टी भाई में सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम हो गया. रशीद कोसु भाई तवांगे प्रोग्राम वणे पयो, थैंक यू. हजार भाई कहते सिस्टर में आपका शो शारजहा से सुन रहा हूँ, जबरदस्त शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई. निधि कहती है कि सिंधी सॉन्ग्स के साथ वो सॉन्ग भी लगा दो. हाजिर हाजिर. रशीद भाई कहते हैं कि हैदराबाद में क्रीम मिल रही है और हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं. ओके क्रीम का नाम तो बताएं, कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं?

0: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

बिल्कुल जी, दिल चाहे थी तू जो नालो मां सुकून रखी छॾियां। वाकई कुझु माण्हू असांजी ज़िंदगी में हूंदा आहिनि जेके असांजी ज़िंदगी में सुकून जो कमु कंदा आहिनि। चलो अगरि तव्हांजी लाइफ में बि कोई अहिड़ो मौजूदु आहे त हुनजो क़दुरु कयो ऐं हुनखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कयो। तो बिल्कुल सुना वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं वाइट स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे बताइए जरा, ताकि मुझे पता चले कि भाई जितने भी ये खूबसूरत लोग हमारे आस पास घूम रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना भाई, खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द का मुनासिब ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। आपकी जल्द को नरम और मॉइस्चराइज रखने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जनाब, और अपनी स्किन केयर को ना तवज्जो देना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई मरतबा जब हम स्किन का ख्याल नहीं रख रहे होते तो उसी वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब आपकी स्किन खराब हो चुकी होती है और बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तब जाकर आपको रियलाइज होता है कि भाई अब हमें चेहरे का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कैसे रखें वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक बन जाता है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो लाजमी कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जो है ना स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर तैयार किया है, कोई भी साइड इफेक्ट का इशू ही नहीं होगा। आपकी स्किन किसी भी टोन की ही आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी दिल खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हजरात हैं खवातीन हैं हर कोई लगा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है। तो ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं ना, ये पूरे पाकिस्तान में अगर आप रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट्स को लेकर तो भाई पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन की गई है। और ये जो है ना, ये इतनी प्रीमियम क्वालिटी की चीजें होती हैं, ये अगर आप देखेंगे ना भाई, जो खवातीन महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं बहुत महंगे हजारों वाले, उन फेशियल्स के अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स को ऐड किया जाता है। तो बिल्कुल ये 2-in-1 फार्मूला होने वाला है, यानी कि ये आपकी नाइट क्रीम तो है ही है, लेकिन ये आपको रिजल्ट तो देगी ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ये ऐसे देगी कि भाई आपने जैसे कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके सिर्फ 2 रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छे खासे रिजल्ट आ चुके होंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको मिल सकती है। तो जाइए और परचेज कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए। और जनाब डायल करते रहिए 03-12-50-25-907 बड़ी 312 50-25 970। अब यो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बड़ी 332 73-84-309 नंबर डायल कयो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो। छो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो ऐं डी स्किन जो फेस वॉश न लॻायो, ईअं मज़ो न ईंदो न। डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो त गॾो गॾु डी स्किन जो फेस वॉश बि लाज़मी वठिजो। ॿई चीज़ूं गॾु गॾु इस्तेमालु कयो जीअं तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले, मुकमल ऐं तव्हां सुहिणा हुजो हमेशह।

वाह साईं वाह शमन जो गानो एंजॉय कयो पया ई प्रोग्राम में तमा के चोंदा भली करी आया प्रोग्राम तमा जो पांजो आए जितां तमा सगे सोना मानो बदो पया सबनी जो मोहब्बत आहिन भाऊ एंड डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो भाऊ सोना सोना थी वनो जी अच्छा अली देना भाई में सुन रहे हैं कश्मीर से थैंक यू कहते हैं भाई जान को अमानुल्लाह महर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है थैंक यू दर्दे दिल कहती है कि वाओ माय फेवरेट सॉन्ग शेला गुल वाला फरमाइश करने वाली थी अच्छा देखो देखो मैंने पहले लगा लिया अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं पता नहीं एक चेन गिफ्ट करो फिर बताऊंगा अब मैं क्या ही बोलूं

अला घोट फेशियल कराइण वियो आहे घोट खे चयो बाबा फेशियल बेशियल खे छॾियो हाणे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो फेशियल में वॾो टाइम लॻंदो आहे पैसा बि इलाही लॻंदा आहिनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बसि परचेस करे अचो ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ा मिंटनि में बल्कि ॿ रातूं अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो था त तव्हांखे भला रिज़ल्ट मिली वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो छॾियो इन्हनि सभिनी चीज़ुनि खे अच्छा रमजान भाई हमारे साथ है रमजान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है निसार महर में सुन रहे हैं हाय तालिब मेरी भाई हमारे साथ है बहुत शुक्रिया तालिब भाई रिजवान अली कहते हैं बहना कैसी हो यस्टरडे आपसे रिक्वेस्ट किया था आप अच्छा गाना आपका रह गया था चलिए ठीक है मैं देखती हूँ गाना लगा देंगे आपका और कहते हैं कि फकत निगाह से होता है फैसला दिल का ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी का क्या है वाह वाह वाह वाह

अच्छा साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं शाहिद बबर का सॉन्ग फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना से आप हमारा शो सुन रहे हैं भाई को वेलकम कहते हैं लाड़काना से भाई आप मार्केट से जो है ना डे स्किन ब्यूटी क्रीम भी परचेज कीजिएगा डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं ये तो बताइए गाने वाने तो हम सुनते रहेंगे हजार भाई कहते हैं कि बिल्कुल सिस्टर अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए लेकिन आजकल लोग अच्छे लोगों की कदर नहीं कर रहे पर काई गाल कोने मां तांजी कदर कंदो पर शर्ता तांगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करनो पंदो ओ ये जियो करे इससे

अच्छा हनीफ अल बलोची कहते हैं मैम गोल्ड सऊदी अरबिया का बेस्ट है। अच्छा सही है। साजिद कहते हैं बहुत बहुत अच्छी है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम, माशाल्लाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, वाकई आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। हजार भाई कहते हैं क्या। अच्छा शायद मिल सकती हैं, आप जाइएगा और जरा मालूमात लीजिएगा, क्या पता मिल ही जाए। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं मेरा टॉपिक वाला कॉमेंट रीड नहीं हुआ, मैंने

वाह साईं भाई तव्हांजो मोहबत हूंदी आहिनि बाबा जी के प्रोग्राम में तव्हां सपोर्ट कंदा आहियो, प्रोग्राम में तव्हां साथ ॾींदा आहियो, माशाल्लाह तव्हांजा इलाही सारा सुठा सुठा फीडबैक्स मिलिया असांखे ऐं खोड़ सारे माण्हुनि असांजी पोस्ट खे लाइक बि कयो आहे ऐं शेयर बि करे छॾियो आहे ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल बि करे रहिया आहियो ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल जेके बि माण्हू कयो था असांखे फीडबैक ज़रूरु ॾींदा कयो, जेके बि ॿुधंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि खे ख़बर पइजी वञे त बाबा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो जेको इस्तेमाल आहे उहो अगरि असां कयूं त असांखे बि भला रिज़ल्ट मिली सघंदा, छो त कुझु माण्हू इन चीज़ में कंफ्यूज़ हूंदा आहिनि त असांजी स्किन त थोरी सेंसिटिव आहे, कोई प्रोडक्ट सूटी न आहे कंदो त असां लॻायूं या न लॻायूं, त तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जेकी आहिनि हे सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहिनि ऐं सभु माण्हू मतिलबु सभु माण्हू लॻाए सघंदा, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज़ कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो।

बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रही हूँ. गाना एंजॉय करेंगे जनाब, लेकिन साथ साथ आप लोगों को बताते चले कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप अच्छी अच्छी बातें जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे तो कितने सारे आपको फायदे मिलने वाले, लेकिन उन लोगों को जरा बताएं जो लोग डी स्किन का फेस वॉश यूज करने वाले हैं. तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो भाई अवेलेबल हो चुका है, हर जगह से आप जाकर परचेज कर सकते हैं. और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है. और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना, ताकि स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. क्योंकि वैसे ही होता है भाई, अगर आप खाने पीने का ख्याल रखते हैं तब भी आपकी स्किन में बहुत सारी चीजें जो है ना वो अच्छा वर्क करती है. लेकिन ये भी चीज होती है कि सिर्फ अपने चेहरे पर जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट लगाना भी काफी नहीं होता. अगर आपके चेहरे पर कोई अच्छा सा प्रोडक्ट सूट नहीं करता, या फिर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए जिसका इस्तेमाल करें, और ऐसे ही चक्करों में आप प्रोडक्ट जो है वो चेंज करते रहते हैं, कभी कौन सा साबुन, कभी कौन सा फेस वॉश, जनाब इन चीजों से जरा छुटकारा हासिल कीजिए. जरा जिंदगी में सांस की सुकून की सांस लीजिए. और यहाँ पर आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश आ चुका है. डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये इतना जबरदस्त और प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश जिसका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेगा. और जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन का फेस वॉश, तो आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को डीपली जो है ना वो क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखता है. तो बहुत सारे आपने फेस वॉश ट्राई करके देखे होंगे, लेकिन जब आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करेंगे ना, तो बात ही अलग होगी. और आपके चेहरे पर जो निखार आएगा, खूबसूरती आएगी, उसकी तो भाई क्या ही बात होगी. तो डी स्किन का जो फेस वॉश है, ये जरूर आप ट्राई करके देखिएगा. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम क्रीमें नहीं लगा पाते. अगर आप क्रीमें नहीं लगा पाते या अभी तक आपकी उम्र नहीं हुई है क्रीमें लगाने की, तो आप ऐसा कीजिए, डी स्किन फेस वॉश का यूज कीजिए. और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना, ये आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लाजमी इस्तेमाल कीजिए, और जरा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और खूबसूरत खूबसूरत होते जाइए. अच्छा, साजिद हुसैन कहते हैं जी अच्छी क्रीम है बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम. वासु भाई आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई. हिदायतुल्लाह कहते हैं सदरा मैंने सुना है. जी जी बिल्कुल आपने सही सुना, ये मैंने भी देखा था और मैं मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो चुकी थी कि भाई हाँ मेरा फेवरेट ड्रामा आने वाला है. तो अच्छी बात है. हजार भाई कहते हैं कि सिस्टर आपको शाम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सॉन्ग की रिक्वेस्ट करूंगा. जी बिल्कुल, मैं आपका गाना चलाऊंगी दिल से, आप फरमाइश किया करें, आपका गाना दिल से लगाया जाएगा. और फहीम भाई कहते हैं फेस वॉश वाला मैं हूँ अदा, बिल्कुल आप फेस वॉश लगाइए और अच्छे से लगाइए. कहते हैं कि अदा जब आपका शो सुनता हूँ तब हमेशा सबकी कॉल आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है दादा? मैं बात खत्म करना चाहता हूँ और वो बात को लंबा करते हैं. अरे भाई ऐसा उनको बोल दिया करें कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुझे कॉल नहीं किया करें. ये टाइम जो है ना ये हमारा है बस, तो हमें दिया करें. और निधि कहती है कि

अच्छा कहती हूँ बाकी तीन लोग पोस्ट को लाइक करो फिर 60 लाइक्स हो जाएंगे, हर चीज पूरी अच्छी लगती है। मैं भी यही चाहती हूँ, सारी चीजें जो ना मतलब मुनासिब होनी चाहिए और मिकदार में होनी चाहिए। तो बाकी दो लोग अभी लाइक करें पोस्ट का। और इसी के साथ साथ बतूल ने हमें जिस गाने की फरमाइश कर दी थी सो फाइनली वो गाना हम लगाते हैं जी, और ये गाना हम सुनेंगे। बड़ी कोशिशों के बाद ये गाना मुझे मिला है तो हम सुनेंगे। और बतूल आप जरा गाना सुनिए अपना और नाराजगी खत्म कीजिए अपनी। रिजवान भाई कहते हैं कि बहन सॉन्ग प्ले करो। भाई ये आपका गाना हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनते हैं, ठीक है।

ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे जाने का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है। जाते जाते आप लोगों को जरा बता कर जाऊंगी कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है, ये आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। आपके लिए हमने हर जगह अवेलेबल करा दिया, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई ऐसा एरिया रह चुका है जहां पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए, तो उसके लिए आपको नंबर्स जो बताए जाते हैं प्रोग्राम में, उनके ऊपर रابطہ जरूर किया करें ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो, जर आपको आसानी हो। बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएं, वहां से आप इजीली डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश परचेज करें। ठीक हो गया, और इसी के साथ वरी ना सा मुलाकात मुझे थे पई पंच बजे वाले प्रोग्राम में। तो पंच ओ हिडो सरो ख्याल रखना, केते का गलती थी मुझे तो माजरत कयूं था, जो को फीडबैक रह जी वयो आहे तो गानड़ो रह जी वयो आहे तो बाबा माजरत मोकलानी ना है। सिलसिला में सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।

वहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वक़ार वतन, और उसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहजीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सगे थो। इन्हीं करे जड़ें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: करके।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: हम तशरीफ लाए और उनके साथ हम जो है वो बात करेंगे और उस दिन अगर वो हमें बताते हैं कि ये रिलीफ हम दे रहे हैं तो फबिया, और अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास अक्टूबर का पहला हफ्ता भी है, पहला अशरा भी है। हम उसी तरीके से, उसी कुव्वत से अपने इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे।
4: जवाद सलामी पेट्रोलियम लेवी खिलाफ़ इस्लामाबाद आ थींदड़ मार्च मुलतवी करे छॾियो। अवाम खे लीफ न मिलण जी सूरत में अक्टूबर में ॿीहर मार्च करण जो ऐलान। जवाद सलामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त احتجاج ملتوی کرن جو فیصلو وزیر اعظم کی درخواست تے کیا ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت وطن واپسی تے وزیر اعظم سے ملاقات کرے۔ ملاقات دوران لیوی تے عوام کے لیف نہ ڈنو ہو تا اکتوبر میں بیہر لانگ مارچ کرنا سی۔ वफाकी हुकूमत जो धरणे वारे मामले ते पीटीआई सां ॻाल्हियूं करण खां इनकार। वफाकी वज़ीर ताला तार चयो आहे त पीटीआई वारनि जी ॻाल्हियुनि बाबति तारीख़ सुठी न आहे, ख़बर न आहे त कंहिं सां ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। हुननि सां ॻाल्हियूं करण जो को फ़ाइदो बि न आहे। अमरकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पानी जूं बैनर पार्टी ते कब्ज़े करण लाइ वॾो हादसो चाहिनि थियूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो हुकुम सभिनी खे मञणो पवंदो, न मञींदड़ ख़िलाफ़ कारवाई थींदी।

0: असले मासूम गुलाब जी गुल सावल साहब कयो मुझे बच्चे के 15 ली भी कोल चा उन जी जला मा उन जो मोगे लसी बाकरी दी तार तक असा जो पेटी में लाश घुमायो लेस लाश के पेटी में आयो ना मा डिटो पी डिटो ना अमर उन जो लाश डिटो आखरी दीदार बेर जो न खयो पंजन मीटर ले आयो पंजन मीटर में रवानो
1: नौजवान शागिर्द वंजन था नौजवान उनके ब्लैक मेल कर उनका पैसा इमरान के ट्रिप कम था ब्लैक मेल कम था
2: यूनिवर्सिटी टेलिंग जो घर ना है पर कोस घर बन जी हुई यूनिवर्सिटी नवाज शाह जी
3: आऊं इन्हें जेको है सिक्योरिटी चीफ का सवाल तो क्या तो जेको असान जे शहीद जो कातिल है वो पास आउट हुई यूनिवर्सिटी में तो वो उते हॉस्टल में छापियो करे
2: कई अड़ा क्रिमिनल मानो हूं जी कहते थे बाहर एडो करे जी शेल्टर वा पर असा खबर अस बचो दुनिया दिठो जुलम थो
4: शाह में कतल थियल कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के शागिर्द आके बालबाणी के वारिसन यूनिवर्सिटी जामिया चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज के जांच में शामिल करने का मुतालबो कर तारू शाह भरसा एहतजाज केस की शफाफ जांच करने का मुतालबो मकतूल शागिर्द के वारिद बेन आकिब के नौजवान के अशफाक बिरोई ए संदस साथी बेदर्दी से कतल किया है जैमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी मुलविस है अशफाक बिरोई पास आउट करने बावजूद यूनिवर्सिटी में रहो हो शागिर्दन के ब्लैकमेल कह हो अशफाक बिरोई बेन आकिब के पैं आईफोन पैसा वापस घुण से कतल किया है शागिर्द के कतल खिलाफ नवाबशाह में यूनिवर्सिटी के शागिर्दन को एहतजाज कंदकोट में सिंधी इम्कानी विरागी खिलाफ एसटीपी जे एहतजाजी रैली कारकुनान एसटीपी ऑफिस का प्रेस क्लब ताई रैली कढ़ी एहतजाज कयो अगवाणन चयो त सिंध धरती असांजी माउ आहे सिंध के टोड़ण वारी साज़िश पूरी थियण न ॾींदासीं फेसगंज जी पुछड़ियन में पाणी जी कोट शिदत इख़्तियार करे वई
5: फेसगंज नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
6: This program is brought to you by
7: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing
8: Dhar mashum aur koti war koti kadamuna de yo nivi duniya palor rawanwi khuda polio raz da kadamuna udrawale humshi no padi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwaze takulo jawab war kawai aw khpal mashuman ta da polio da makhniwi dwa sas ki war kawal mahirawai zaka ch hum da sas ki da mashuman da badan difai ta kazyatawi aw da hagi da khubun walwat wazrimumi polio yani mustaqila mazuri

सिंधड़ी जी शाम में सिकवंदो सलाम चवंदे अवां जो मेज़बान अवां जो आरजे अवन पंहिंजो यूनुस बकारी प्यार ऐं पाव हुआ मोहब्बतुनि लफ़्ज़नि ऐं गुलाबनि जहिड़ा ख़ूबसूरत जज़्बात तव्हांजे ख़िदमत सामाइन अवां शामिल थियण चाहियो था त हिकिड़ो मैसेज यादगिरी तौर ॾेई सघो था करे सघो था मैसेज तरीक़ेकार बिल्कुलु साॻियो ई उहो त लिखणो आहे अव्हांखे MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो जी हा 888-188 असांजो नंबर हुन ते मैसेज मोकिलिजो ऐं मैसेजिस शामिल कंदासीं ऐं ॿी कलाक में हुनजी कॉल्स बि शामिल कंदासीं त पोइ हलूं था साज़ अहिड़ी सुरीले आवाज़ न जंहिं आवाज़ खे ॿुधी यकीन रखे

वेलकम बैक मजी सामाईन, ही आहे GFM88 रेडियो नेटवर्क। अवां शो बुधो पिया सां मैं सिंधी शाम में अवां जो आरजे वने मेज़बान जी है उही साग्यो अवां जो यूनुस बतारी। जिते जिते भी हुजो शाद आबाद हुजो यकीनन सर्दी जगह गर्मी की शिद्दत है तमाम घनी है सभी के ओसी हों कदें जो सर्दी अचन कदें भी मौसम थदी थे फिलहाल काफी इलाकन में हीट स्ट्रोक तमाम ज्यादा है गर्मी तमाम घनी है उन सभी के घुर्ज असो पान के पैं फैमिली के पैं खानदान के पैं बचन के गर्मी की शिद्दत का बचाई छो तो हीट स्ट्रोक अड़ी शा इंसान की जान वी सके शरीर जगह गर्मी है उन में कोशिश कयो तो वध में पानी पियो कोशिश कयो तो मथे ते कपड़ो रखो फुसिल कपड़ो हो तो बेहतर है न तो को टॉल वगैरह रखो जो है हल्का कपड़ा पायो जेके हल्के कलर में होजन ताकि ताकि गर्मी की शिद्दत महसूस न थिए गर्मी में ये न निकरो जेकर को जरूरी इन ही घणो कम है तो कोशिश कर तो या सफा सुबह सवेरे गर्मी की शिद्दत ताकि तकलीफ न दई सके छो तो गर्मी लू जी होंगी है जेका शिद्दत वाली गर्मी होंगी है जी हाँ अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक चवंदा हीट स्ट्रोक अड़े किस्म की बीमारी है जी को तकड़ो इलाज भी कोने वो बस मानू गर्मी की शिद्दत का न रुगो मुतासर थी परेशान थे तो पर उन गलो गड उन जान के खतरो लाहक थी वे तो उन कर असो फर्ज थे तो अस न रुगो उन अवेयरनेस दूँ पर असे बिन मान बुधायूं खास तौर पर असके पोरे तबको है वो हर हाल में मेहनत मजदूरी करे तो ऐह जहाँ समूरा जो गर्मी वाला कलाक उनके मेहनत मजदूरी करनी पवे थी तो जिते हवाओं का हटी कर गर्मी में सख्त काढ़े में जिते शरीर गर्मी में जो है कमकार करो पे तो उत सब का पैरों जो कम हुई तो पैं हिफाजत पैं तोहफे ला कुछ कजें तो हूं तो बो तो जैसे न भी कर सकते तो जो गर्मी का बचाव जे उसूल उनके अपनाइजे खास तौर पर जो असा पोरे तो मजदूर मानून जे वे कन था या जे बहरा दिन में या कारखाना से कम कन था जिते गर्मी तमाम घनी है उन गर्मी का बचण के लिए वो कोशिश कन तो वध में वध पैं पान के बच पैंजे कपड़े गंदी जे हवाले सा पानी पीने जे हवाले सा महसूस थे घनी गर्मी तो वेंजन सेंजन खपे ताकि उनको जिसम जो टेम्परेचर है गर्मी जो है नॉर्मल थी सके सो मजे सामने अवां सा ये गाल्हियों जारी रहंदी पर असानी ख्वाहिश इहा हुंदी तो अजो के शो में शिरकत कंदव अवां जी शिरकत के यकीनी तदे समझंदासीं जडे तवां जो एकड़ो मैसेज अची वेंदो मैसेज जो तरीको बिल्कुल उहो ई साग्यो है जेको अवां अगे मोकलींदा आहियो पर छाकाणि जो असांजी हर स्टेशन तां जेको शो थिए थो उहो पंहिंजी कमांड असांखे ॿुधाइणी हूंदी आहे उहो हिकिड़ी कमांड हूंदी आहे MTI माना शॉर्ट अखर है असो उन में तवे MTI लिखण का थोड़ा स्पेस दियण है गोठ शहर जो नालो लिखणो पैं नालो लिखणो है सेंड करणो है 8881 888 1 ते सेंड कर छो तो वो तक मैसेज है वो अस इंशाला शामिल कर वी जी मेहरबानी असा के प्यार से ध्यान से पैं एप से बुधन पे उन मोहब्बत उन वा वुर्ब तड़ो ट्रैक प्ले कर वेठा उन कमर्शियल ब्रेक हों कमर्शियल ब्रेक का जैसे वापस मैसेज शामिल कदी तो फिलहाल पढ़ हलूँ था सुरीले ट्रैक मारवी सिंधु जो आवाज़ आए तो गची बुधूँ

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: जी स्किन डल बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03086313।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था
4: सिंध के माथे का झूमर?
5: DFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: PK पर अप्लाई करें। शराय तो जवाबित लागू हैं।
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दया नवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल माहेरवई जका चुहम दा सास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगे द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12 सैकड़ो ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10 सैकड़ो रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसिन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बेडी घुराए पूरी करे दींदासी घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086313
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 0300296243 5 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

पाण खां बाबू मल्हा साहब दे पियो बाबा नी अवां म्याण खां असां खे जॉइन कयो आहे भली कार ऐं नफ़ीस खटी म्यापोटा तलहार खां ॿुधे पियो नफ़ीस खटी अवां जो तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं हाफ़िज़ अब्दुल जब्बार खटी हाफ़िज़ मोहम्मद हारून खटी असांखे ॿुधी रहिया आहिनि पाटार बदीन खां वेलकम था चऊं अवां।

ही आहे GFM 88 रेडिओ नेटवर्क। हा शो ॿुधो पिया सिंधड़ी जी शाम यूनिस बकारी जे नाम जी जी मुझे नाम न मुझा सलाम अवां जे नाम तपाई गजी ही ट्रैक अहमद मुगल जो एंजॉय कयूं था ऐं दर्दीले हिन गीत सां न्यूज़ ब्रेक ॾांहुं हलंदासीं जितां खां अव्हांखे ख़बरूं चारियूं ॿुधाईंदासीं ॾेह तोड़े परॾेह जूं उतां वापसि अची बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं अव्हां सां टेलीफोन कॉल्स वारियूं पोइ साथ निभाईंदो न। फ़िलहाल ही दर्दीलो साज़ ही आवाज़ अॼु त कच्छी ॿुधूं हिन खां पोइ न्यूज़ ब्रेक ॾांहुं हलंदासीं उन खां पोइ कमर्शियल ब्रेक हूंदो ऐं जीअं ई वापसि ईंदासीं पूरी पूरी असांजी नशरियात अव्हांजे नाम हूंदी।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मुल्कन ईरान का हौसियन जी हिमायत खत्म करने का मुतालबो करे छो गजल कौमन में अमेरिका बरतानिया कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली और जापान के परदेही वजीर जो इजलास हौसियन का फौजी कार्रवाई रोकण धमकियों जो सिलसिलो बंद करण और गालियन तरफ वापस अचान का मुतालबो किया ईरानी सदर मसूद कशिकियान गरियल कौमन इजलास में शिरकत लाइ न्यूयॉर्क रवानो परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची पहिरीं न्यूयॉर्क पहुतल साफ़ियन सां ॻाल्हाईंदे अब्बास अराग़ची चयो त गरियल क़ौमूं आलमी अमन ऐं सलामती जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम थियूं आहिनि आलमी इदारे ते एतमाद बि ख़तम थी चुको आहे ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ़ चयो आहे त हाणे ईरानी मिज़ाइल दुनिया में कंहिं बि हंध ते टारगेट खे निशानो बणाए सघनि था ट्रंप पंहिंजी ताक़त ईरान ते मड़ी नथो सघे ईरान जमी बीठल आहे फौज दहशतगर्दनि खे शिकस्त ॾियण ऐं मुल्क में जिटादार अमन जे क़याम लाइ पुरसम आहे वतन लाइ शहीदनि जी ॾिनल कुर्बानीअ खे विसारे नथो सघिजे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं पिशावर गैरेजनि जे दौरे दौरान ॻाल्हियूं ISPR मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारां कोर हेडक्वार्टर्स पिशावर जो दौरो कयो फोर्सिस खे हर वक़्तु चौकस रहण ऐं ऑपरेशनल तयारी बरक़रार रखण जी हिदायत कई फील्ड मार्शल खे KP जी सिक्योरिटी सूरतहाल ते ब्रीफिंग ॾिनी वई सूबे में जारी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन सरहदी इंसामन ऐं फार्मेशन जे ऑपरेशन तयारियुनि बाबति बि आगाह कयो वियो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी भरी ऐं भेटा पेश कई बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन 6 दहशतगर्द मारिजी विया नव शकी गिरफ़्तार सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब बलूचिस्तान जे इलाइक़े सारा तंगी में ऑपरेशन कयो वियो कार्रवाई दौरान हिंदुस्तानी फितने सां भागियल 6 दहशतगर्द मारिजी विया मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां हथियार ऐं बारूदी मवाद हथु कयो वियो पाकिस्तान में दहशतगर्दी ऐं बदमनी पुठियां भारत तालिबान गठजोड़ हिकु भेरो ॿीहर वाइकी मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ़ नापाक मक़सदनि लाइ अफ़गान सरज़मीन ऐं तालिबान रजीम खे इस्तेमाल करण लॻी वधीक हिकु अॻूणी भारतीय फ़ौजी आफ़िसर पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ लाइ अफ़गान सरज़मीन जे इस्तेमाल जो वाज़े एतिराफ़ करे वरितो कर्नल रिटायर्ड शिलिंदरा सिंह TV प्रोग्राम में एतिराफ़ कंदे चयो आहे त भारत अफ़गान सरज़मीन खे पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे पंहिंजा मक़सद हासिल करणु चाहे थो भारत सदाई इहो चाहींदो आहे त पाकिस्तानी फ़ौज जो ध्यानु पाक अफ़गान सरहद ते हुजे ऐं बलूचिस्तान टोड़ी ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में TTP ऐं ॿियनि दहशतगर्द तंज़ीमनि सां उलझियल रहे
4: और जरा जल्दी जल्दी आना चाहिए और वो तशरीफ लाए और उनके साथ हम जो है वो बात करेंगे और उस दिन अगर वो हमें बताते हैं कि ये रिलीफ हम दे रहे हैं तो फबिया और अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास अक्टूबर का पहला हफ्ता भी है पहला अशरा भी है हम उसी तरीके से उसी कुव्वत से अपने इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे
3: जवाहर सलामी पेट्रोलियम लेवी ख़िलाफ़ इस्लामाबाद ॾांहुं जारी मार्च मुलतवी करे छॾियो अवाम खे रिलीफ न मिलण जी सूरत में अक्टूबर में ॿीहर मार्च करण जो ऐलान जवाहर सलामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त एहतजाज मुलतवी करण जो फ़ैसिलो वज़ीर आज़म जी दरख़्वास्त ते कयो आहे जमात इस्लामी जी क़यादत वतन वापसीअ ते वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कंदे मुलाक़ात दौरान लेवी ते अवाम खे रिलीफ न ॾिनो वियो त अक्टूबर में ॿीहर लॉन्ग मार्च कंदासीं वफ़ाक़ी हुकूमत जो धरणे वारे मामले ते PTI सां ॻाल्हियूं करण का इनकार वफ़ाक़ी वज़ीर अल्ला ताला चयो आहे त PTI ॻाल्हियुनि बाबति ख़बर नाहे त कंहिं सां ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि हुननि सां ॻाल्हियूं करण जो आहे मुंबई जूं बैनर पार्टीअ ते कब्ज़ो करण लाइ वॾो हादसो चाहिनि थियूं इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो हुकुम सभिनी खे मञणो पवंदो न मञीदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी वॾे वज़ीर फवाद अली शाह सां ख़ुराक जे आलमी इदारे जी नुमाईंदी अनीता हर्ष जी मुलाक़ात स्कूलनि में खाधे जी फ़राहमी अगवाट कदमनि ऐं समाजी तहफ़ लाइ सहकार वधाइण ते ग़ौर कयो वियो सिंध हुकूमत ऐं गॾियल क़ौमनि जे ख़ुराक बाबति आलमी इदारे विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ फवाद अली शाह चयो त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबब सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़िततनि में शामिल आहे वज़ाई कोर्ट खे मुंहुं ॾेई ऐं स्कूलनि में हाज़िरी बहितर बणाई मज़बूत सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे میرپور ماتھے لوے جو بندورین میں سگاوتی تکرار تا چڑو تے جڑا قتل پنج زخمی پوٹ پاؤ ڈو میں مرناس برادری جی بندورین میں سگاوتی تکرار تا جھڑو تھو جھڑے دوران گولیوں لگن سبب بلاول فقار ہے مختار مارچی ویا مقتولن جا لاش ہے زخمی اسپتال منتقل
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: اجرک کے رنگوں سے رنگی
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
5: سندھ کے دل سے نکلی آواز
6: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
7: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
8: آس پاس کی عوام لئے خوشخبری
5: اجرک کے رنگوں سے رنگی
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
5: سندھ کے دل سے نکلی آواز
6: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अदनान चांडियो, ज़ुल्फ़िकार चांडियो, फहीम चांडियो,
1: जी जी जी,
0: बाकी बुधण जेके बि आहिनि सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ां अस्सलामु अलैकुम, यादि मदद।
1: वालेकुम अस्सलाम, महिरबानी। लखे थोरा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु।

0: जी खालिक लाशारी साहब, छा हाल आहे? खुश आहियो? ठीक आहियो? जी जी, अवां सां गॾु केरु थो ॿुधे? महिरबानी मिठा माण्हू, लख थोरा तव्हांजा। ओके जनाब, ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते अगरि केरु हूंदो। ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क, अवां पंहिंजो शो ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम। RJ यूनुस बकारी जो सलाम। कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे ऐं कॉल अटेंड करे वठूं। हलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं, केर साहब ऐं किथां खां? सिकंदर अली शंभाणी साहब, खुश आहियो? ठीक आहियो? चाक चङा भला मातारा जोड़। अलहमदुल्ला, भला गर्मी जी मौसम आहे तव्हां ॾांहुं?
1: हा साईं, सख़्त गर्मी आहे, तमामु घणी आहे साईं।
0: तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: हा, शायर अली गुल वीरानी आहे सखर मां, उहो सां गॾु ॿुधे थो। ऐं पंहिंजो नवीर अहमद मंगड़ियो साहिबु आहे, मोहम्मद बदल शंभाणी आहे। जिते मुंहिंजो मुसाफ़िर आवाज़ वञे थो, सिकंदर अली शंभाणी जे तरफ़ां सलाम।
0: वालेकुम असलाम, वालेकुम असलाम, थैंक यू वेरी मच। लख थोरा दोस्तों, मेहरबानो कदरदानो, कॉल करण लाइ नंबर आहे 0334352578 ॿुड़ी 3024525. कॉल ते ॾिसंदासीं असां गॾु केरु, पर जॾहिं कॉल करियो त पाण वटि जेको रेडियो हुजे पियो हुनखे परे कजो, ताकी रेडियो ते क्लियर अचे। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, केरु साहब ऐं किथां खां? भेट ते चढ़ी मथे असांजो कटिजे पियो तव्हां सां गॾु, केरु पियो ॿुधे?
2: अज़ीम सोलंगी, कुर्बान ख़ासि केली ऐं सभिनी खे सलाम। सर, गीत किरियो शामिल कोन कयो?
0: हा, हिन जे करे त

0: वालेकुम सलाम, केर साहब किथां खां?
1: हेलो
0: जी साईं, केर पिया ॻाल्हायो? अदा साईं, जॾहिं कॉल कयो त हलो हलो ज्यादा न करियो, तव्हां असांजी ॻाल्हि ॿुधण जी कोशिश कंदव त ॻाल्हि सम्झाईंदी रेडियो स्टेशन आहे, ठीकु आहे? हीउ पर्सनल मां कॉल अटेंड कोन थो कयां, रेडियो आहे वंस मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झो त जॾहिं तव्हांजी लाइव कॉल अटेंड थिए थी त जेका ॻाल्हि तव्हांखां पुछां उन ते अस्सलाम वालेकुम चई पंहिंजो नालो वठण शुरू करियो त जीअं असांजी ॻाल्हि ॿोल साफ़ सुथरी हली सघे। कॉल ते ॾिसंदासीं त असां गॾु केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, अदा कहिड़ो हाल आहे? घोट बाबू वेरो तरपार करकान, दिलीप कुमार मेघवाड़ ॻाल्हायां पियो।
0: जी छा हाल आहे दिलीप कुमार
1: जी? अला शुक्र, अॼु नेटवर्क खां बग़ैर मातली असांजे छाछरे में ईअं पई हले जीअं कंप्यूटर जी नसर सफ़ा क्लियर जी हले पई।
0: चलो चलो, इहा बि नेटवर्क जी महिरबानी आहे ऐं कंप्यूटर जी महिरबानी ऐं तव्हांजी महिरबानी, तव्हांखे ॿुधो पिया। अच्छा, अवां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे?
1: जी नवल राज, दानिश कुमार, सूरज गुल, शंकरलाल मेघवाड़, रुस्तम अली पवार, मलक मोहन बलोच, रामचंद मकवाणो, ॿिया जेके ॿुधनि पिया, अब्दुरमान लगारी, मोहम्मद साले लगारी, सलाम सभिनी खे।
0: वालेकुम असलाम, कुर्ब तव्हांजा साईं, कुर्ब तव्हांजा लख। आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क लाइव कॉल्स जो शो, अवां ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम। कॉल अटेंड कयूं था, ॾिसंदासीं केरु आहे असां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम साईं, मलक मोहम्मद बलोच ॻाल्हायां पियो, मिठी थरपारकर खां।
0: जी मोहम्मद मलिक बलोच, कहिड़ा हाल आहिनि
2: साईं? अलाह लखे अहसान, मां ख़ुशि आहियां। यूनस भाउ, तव्हां ख़ुशि आहियो? ख़ैर आहे?
0: अलहमदुल्ला, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो। ऐं असां गॾु केरु थो ॿुधे?
2: साईं कल्ह बि मां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधो, मगर मूंखे नंबर कोन मिलियो, ऐं अॼु तव्हांजो नंबर मूंखे महिरबानी थियो आहे।
0: न, नंबर महिरबानी न आहे थियो, बसि ईअं आहे त कॉल जीअं खाली थिए थी त ॿिए जी लॻी थी वञे, बसि ट्राए कंदा रहो, जीअं अंग्रेज़ी में चवंदा आहिनि ट्राए अगेन। अच्छा, तव्हां सां गॾु
2: कामयाबी जी कुंजी आहे, मूंसां गॾु दिलीप कुमार आहे, रोस्तम पवार आहे, मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो आहे, रामचंद मकवाणो आहे, ऐं असांजो पुराणो तमामु सीनियर ॿुधंदड़ भाउ लखा ॾिनो जूने जो ॿुधे पियो, ऐं जेके दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी खे सलाम।
0: वालेकुम असलाम साईं, किरोड़े कुर्ब तव्हांजा, मोहबतूं तव्हांजो लख थोरा। मलक मोहम्मद बलोच असांखे जॉइन कयो मिठीअ जे मिठियुनि हवाउनि मां। अॼु जीअं त मूं पहिरीं बि ज़िक्र कयो त सॼी सिंध में गर्मीअ जी लहर आहे, सामूंडी हवाऊं बंदि आहिनि, ऐं हिकिड़े इतला मौजिबु मौसमियात खाते जे इतला मौजिबु त हीअ गर्मी जी लहर 25 तारीख़ ताईं जारी रहंदी, ऐं 25-26 तारीख़ खां पोइ आहिस्ता आहिस्ता समंड जूं हवाऊं खुलणु शुरू थींदियूं। फ़िलहाल गर्मी ऐं हीट स्ट्रोक जे करे तव्हांखे परेशानी हूंदी तमामु घणी, ख़ासितौर ते उहे शागिर्द जेके इम्तिहानी सेंटरनि में इम्तिहान ॾियनि था, अलाह करे त हुते बिजली बरक़रार हुजे त जीअं उन्हनि जा पेपर सही थी सघनि। ऐं हलूं था पाण हिकिड़ी वधीक कॉल ॾांहुं, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जी, केर साहब किथां खां?
3: जी साजिद चांडे थो ॻाल्हायां, कठीपुर खां।
0: छा हाल आहे चांडे साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
3: केर रहमान दाऊं, तव्हां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो?
0: अलहमदुल्ला, तव्हां सां करे ॿियो केरु पियो ॿुधे?
3: जी मैं बाबा अख़्तर रहमान चांडियो, ऐं मैं भाउ सदाम हुसैन चांडियो।
0: जी जी,
3: ऐं ॿियो आज़िद चांडियो।
0: तमामु घणियूं मोहबतूं आहिनि तव्हांजूं, तव्हां शामिल थिया, वेलकम चवंदासीं तव्हांखे साईं।
3: थैंक यू।
0: जी जनाब, नंबर आहे 2-324-25-75-786, यानी 2-3-4-3-5-2-5-7-8-6, इन नंबर ते कॉल ते केरु हूंदो, ॾिसंदासीं, हलंदासीं कॉल ते ऐं शामिल कंदासीं कॉल। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अलाए छा थी वियो, कॉल होल्ड ऑन थी वई? जी ॾिसंदासीं, केरु आहे त पोइ शामिल करे वठंदा वठूं कॉल। हलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरु साहब ऐं किथां खां? जी छा हाल आहे चांडिया साहब? साईं मां थोराए थो तव्हांजो, मां खादिम तव्हांजो, भला जेको तव्हांजो इलाइक़ो आहे इहो कहिड़े ज़िले खे लॻे थो?
3: अच्छा,
0: वाह वाह, भली।

0: माल चारियो शुक्र आहे, सुठी ॻाल्हि आहे ऐं सुठो कमु आहे। अवां असांखे ईअं समझो त कंबर शहज़ादकोट डिस्ट्रिक्ट खां ॿुधो था, ईअं?
1: जी जी जी।
0: थैंक यू वेरी मच। माना तव्हांखे लाड़काणो FM लॻंदो हूंदो, असांजो 88 लाड़काणा। साईं मूंखे ख़बर आहे तव्हां सभई चांडिया बिरादरान जबल ते वेही कॉल कयो था, तॾहिं सभिनी जी कॉल लॻे थी। इन जे करे तव्हांजो महिरबानी, तव्हांजो मोहबतूं मां थोराए थो आहियां तव्हांजो। साईं मास्टर मंज़ूर हाज़ुर, तव्हांखे हाणे ही ॿुधो भला हले पियो।

0: जी जनाब मास्टर मंजूर जी सदा उनसाण कॉल पर अटेंड क्यों था दिसूं था हाने असा सा कॉल ते केर थो जुड़े हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो वालेकुम सलाम
0: हां भाई किथा का
1: भाई यूं ना सब गोच पुनू खान पावर तर के सेवन शरीफ का रुस्तम अली पावर पे गलाया
0: जी रुस्तम पावर साहब ता सा कर बे केर पे बुदे
1: सही था जो प्रोग्राम तमाम सुठो पे अब दूं असा सा गदा दिलीप कुमार में
0: सलाम वालेकुम सलाम किरोड़े कुर्ब मिठा मानो थैंक यू जी जीएफएम 88 रेडियो नेटवर्क के लाड़कन स्टूडियो मोरो स्टूडियो मेरा करंट स्टूडियो मटियारी मेरे प्रो ही सिंध जो सब का वडो ओ है हिकी वक्त ऑन ईयर जे नालो है जीए एफएम 8 नेटवर्क अवान वासन बुखारी है मोहब्बत जो सिलसिला जारी हो सारी दिसनासी हाने सगर कॉल ते केर आ है कॉल अटेंड कदे दिसनासी केर हुंदो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी तुम केर पे गलायो
1: शाबक्ष सवाली डंगड़े
0: का और सवाली डंगड़े का शाबक्ष शुक्र अलहमदुल्ला तुम सा कद भी केर तो बुधे
1: मुझे भा आलम खान डंगड़ो गुलाम रसूल डंगड़ो गुलाम अहमद डंगड़ो चाचा वाहिद बख्श डंगड़ो अल्लाह यार डंगड़ो एहसान बख्श डंगड़ो अली नवाज वापारी डंगड़ो
0: मेहरबानी लख थोड़ा सभी जहा मेहरबानी कुर्ब तह दोस्त वरी भी सागो अर्ज जैसे कॉल करो था यो सोचो तो कॉल तहजी अचण मल रेडियो परे रखो या रेडियो बिल्कुल घट आवाज के अवल तो बंद कर छो ताकि तवी कॉल पूरी दुनिया सही नमूने बुधे हाँ अवं पैंजी कॉल बुधंद न तो रेडियो तीन गाल बोल है वह कॉल से तकड़ी बुधा हों रेडियो में घट में घट 40 सेकेंड लेट से ऑन ईयर थी इन कर गड़ियल गाल हों अं भी भूल वा मां भी परेशान थी वस बुध था कॉल से हाँ असा गुड केर हों हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: केर साहब है किथा का
2: साईं गोठ काजी आरिफ दल के लीडर का वफा यासीन चांडे पे गराया सर वेलकम
0: साईं थैंक यू वेरी मच साईं
2: सा गदा इन यामीन अली चांडे हो जामीन अली चांडे हो यासिर अली चांडे हो दिलीप कुमार मेघवाल वफा मुनीर अहमद सियाल ए जिते जिते समाज तो असा के बुधी रहयो आइन सबनी के कबूल पे सिक भरयो सलाम
0: वालेकुम असलम वालेकुम असलम मोहब्बत मिठा मानो पे दफो कॉल कई
2: खुश हो जो
0: ओके जनाब थैंक यू वेरी मच दोस्तों जेको दोस्त साफ सुथरो शॉर्ट गलाये तो सुची गलू करे तो उनकी कॉल ते गलाइंदे डाडो सुठो लगे तो दिसनासी कॉल ते हाने केर आए हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके जी कॉल धनी पान कटी छदी एकडी वदी कॉल अची चुकी है दिसनासी केर आए हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम
3: हेलो
0: आवाज अचे पे साईं जी बो तेर पे बुधे
3: खुश आयो ठीक मजे में गर्मी किया
0: अलहमदुल्ला सुख लगा पे तमाम बुधायो
3: मौसम गर्मी जी गर्मी तकरीबन बड़ी दे हाई लेवल
0: साईं साग्यो देश साग्यो वेस हाँ बुधायो
3: लार में कारन की सुविधा थी प्यारन की खुशबू जे थदगा
0: ने ये अदबी गालियों ने पर रियल में ये तो साह तो निकरे एडी गर्मी है हां बे बुधायो बी हाले वाले
3: ये गर्म थी पई है सारी तबी पई है
0: साई वो मौसम खाते बुधाय छरी वा तो 26 तारीख तई घुट ही
3: बुसर भी बुधा दे आज कासम लखवानी भी गड बैठो को मुखे जे दोस्त मु साई यूनुस के बुदू पे प्रोग्राम में जो दिन हिसाब ना बुजो अगर दोस्त रुस्तम पवारा जो गुलाब फूल है दोस्त
0: साईं सभिनी जूं महिरबानी, तव्हां पंहिंजी ख़बर ॾियो, ॿियनि दोस्तनि खे छॾे ॾियो, ॿिया पाण अची वेंदा लाइन ते। बसि बसि बसि वञो, कीअं वण हेठि बीहो, पाण चवनि ॻाल्हि ॿुधो, के वण हेठि बीहो, थधी छांव वठो ऐं पाणी जो ढुक पियो, ऐं दोस्तनि जा नाला तव्हां वठी वरिता आहिनि। ख़ुशि रहो, आबाद रहो, तारनि में चंड ऐं खीर में खंडो चओ। चोहनकुमार कोहली साहब कुंडरी जे हवाउनि खां मां असां सां मुखातिब थियो, ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त ईअं थींदो आहे त मां ब्रेक वठणु चाहियां थो। इंजीनियर जो इशारो अची वियो आहे, ऐं उहो इशारो जेको हूंदो आहे उहो बिल्कुलु कंप्लीट सुठो इशारो हूंदो आहे, पोइ वठूं था ब्रेक।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, फिर रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।

0: कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: जो शहर बहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8

0: ਆਪਾਂ ਐਂਬਰਾਇਡਰ ਮੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਤਰੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ते जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
2: कोकोनट का नट चबाने का कट, स्वीट हिल नट कट, कोकोनट फिल्ड कैंडी,
3: अर्जेंट ब्यूटी क्रीम हर किस्म के स्किन को दे फ्रेश ग्लो और गोरी रंगत। अर्जेंट ब्यूटी क्रीम
2: जूस गोली में जूस स्वीट हिल की मैंगोली कैंडी।
4: थम थम थम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: सकता हूँ मैं सगर आज अमीर आजम वजीर आजम शहबाज शरीफ इन वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है पंजवी तारीख थे गलील कौमन की जनरल असेंबली के खिताब कद जैसे मोहसिन नकवी साहब वफाकी गरु वजीर इन वक्त मौजूदा ईरान में जिते ही गैर मामूली दूर बुधा पे वे बिन्हीं दौरन जो वो मकसद बुधा पे वे तो गालो अमल हो ईरान अमरीका की जंग के कॉन्टेक्स्ट में उन हवा से जो विचो भर की ताजी सूरत हाल है उन हवा से किरदार अदा कर पाकिस्तान मुसलसल सरगर्म रो है हाँ भी पाकिस्तान सरगर्म है मुसलसल अमुन बहाली की कोशिशों वे पो पर एक पास नाजरीन आलमी अमुन की बहाली जो कोशिशों जारी हैं उन मुल्क सरगर्म नजर अचे पो पर मुल्क अंदर सूरत हाल है जैसे उन नजर वजूं तो एक पास केपी अंदर गवर्नर राज जो धमकियों असा नजर अचन पयूं बे पास नवन सूबन जो मामलो असा नजर अचे पो उन हवा से मुसलसल मुहिम असा नजर अचे पी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैंजे लॉन्ग मार्च के वी कर अटल आए उन्होंने सख्ती से मुंह डो वो उन हवा से गवर्नमेंट भी पैंजे मौकफ से बदस्तूर कायम नजर अचे पी तो बे पास असा ऊँ पा अवाम मुसलसल महंगाई आके मुआशी लोडा उनके अचन पा उनका तमाम घो तंग नजर अचे पो मुख्तलिफ जी सूरत नजर अचे पी जैमें असूं पा तो सिक्योरिटी जहा चैलेंजेस भी तमाम घना गुजरियल ढी पिण के पी अंदर अफसोसनाक वाक्यो पेश आयो सिलसिलो मुसलसल केतरे ही दिन का केतरे ही वक्त का जारी नजर अचे पो तो सिक्योरिटी जहा चैलेंजेस मौजूद है मुल्क अंदर मुआशी चैलेंजेस मौजूद है मुल्क अंदर जो सियासी सूरत हाल है उह पिण इन वक्त लोडन में है समूरी सूरत हाल में बार बार समूरी जो नजरू वन पयू हुकूमत से वन पयू तो हुकूमत हाँ कड़ो नक्श कदम खड़े थी उन हवा से नाजरीन इन समूरे माहौल में वदंदड़ छिकताण में कुछ उम्मीद भी नजर अचे पी गाल हवा से कुछ राबता भी थिया कुछ कोशिशों भी थियन पर अना तई को ब्रेक थ्रू नी सको है उन हवा से भी प्रोग्राम में गुफ्तगु कदे हाँ जी हि सूरत इन वक्त नजर अचे पी जेतोणीक गाल हवा से कोशिशों थियन पयू राबता थियन पा पर उन बावजूद जो टकराव वो माहौल है उनमें तमाम घड़ी शिद्दत अचे पी तो हाँ हुकूमत तोड़े ऑपोजिशन इन समूरे माहौल में छिकताण वो रस्त व्यूं या गालो रस्त व्यूं अजो के प्रोग्राम में उनते गुफ्तगु कदे जो पैनल मुझा गुड मौजूद है गुफ्तगु के लिए उन तारोफ असा कराईदस जो कि प्रोग्राम में गुफ्तगु के लिए ज्वाइन किया है नाशरीन मुझा गुड असलम गौरी साहब मौजूद हैं जे यू आई जहाँ मरकजी तर्जुमान हैं वीडियो लिंक जरिए इन प्रोग्राम जो हिस्सों उनका सवाए नाशरीन राजा अंसारी साहब मुझा गुड मौजूद हैं वफाक ज सिंध लाए तर्जुमान हैं वीडियो लिंक जरिए इन प्रोग्राम जो हिस्सों डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं कुछ देर में मुझे ज्वाइन कदियं उनका सवाए नाशरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगोणो एमपीए है सरबुलंद खान साहब वो पिण मुसा गुड मौजूद है प्रोग्राम में सभी के भलीकार अवानी मेहरबानी अवान गुफ्तगु के लिए वक्त नो राजन साहब जब अवान का गुफ्तगु जो आगाज क्या थी चवन अवान मूड तो वाजे थी वो है वफाकी सरकार जो तो चवन पा बाकी इन वक्त वॉर्निंग्स सामू अचन पयूं उन्होंने में भी काफी हद अंदाजो थे पो तो हुकूमत सोचे पी कर वे पी सतावी का अग पर वक्त असूं पा तो इस्लामाबाद जो माहौल है इस्लामाबाद का कंटेनर सिटी लगे पो अज का सरकारी तालीमी इदारा भी बंद थे खंदकू आए उनका सवाए वाधू नफरी ही माहौल जै एक आम मानू के लिए तमाम घनी दुखी जिंदगी कर छी है हुकूमत करण पी वे ही एक पास तमाम वो ही टकराव वो सूरत हाल मुसलसल टकराव वो खतरो वो पे वे बे पास कुछ कोशिशों गाल हवा से थियन पयू हुकूमत की प्रायोरिटी रही इन माहौल में
1: ऐसो नादिया हुकूमत यो समझे पई तो सिर्फ हुकूमत न पाकिस्तान की जी अदालतू आन हाँ खास तौर से इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी फैसलो दिनों उनमें भी उन्होंने यो सब गाल तफसील से लिखी आन तो ही बेसिकली क्रिमिनल एलिमेंट्स आन जे इस्लामाबाद से मुल्क के दारुल हुकूमत से का करे रहा है ये हमलावर आन ए लाजमी गाल है जैसे एक एलानियल हमलावर ऐलान कर तारीख दई कर हमले के लिए रेडी आन तो रियासत भी तैयार है उन्होंने से मुकाबलो कर
0: राजन साहब साहब जे फैसले जो हवालो दियो पिया उन ही फैसले में जाना ला कें रस्ता बंद करने की इजाजत ना है कें अड़े अमल की इजाजत ना है जैसा अवाम के दुख्याई थे पर इन वक्त हुकूमत जो देख दे पो इन वक्त इस्लामाबाद वफाकी राजधानी इन वक्त मुकम्मल कंटेराबाद जो असके देख दे पी जिते हर पास कंटेनर्स आन खंदकू इजाफी सरकारी तालीमी इदारा उत बंद आम मानू तो जो कार बवार हो तो आम जिंदगी जो तमाम घड़ो मुतासिर थी हुकुम तो हुकूमत के मथा भी लागू थे तो
1: बिल्कुल थे तो पर ही हुकुम मां समझा तो कुछ डेवलपमेंट्स थियण का अग में जो हुकुम आए उन कुछ बी डेवलपमेंट्स भी थी उन कुछ धमकियों भी मिली उन इस्लामाबाद से इन पीटीआई के एहतजाज की आड़ में जे फितनतुल हिंदुस्तान है फितनतुल खवारिज है उन्होंने भी हमले जो धमकियों इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आन तो लाजमी गाल है मानुन की जिंदगी के बचाण है इस्लामाबाद के मुल्क के कैपिटल के बचाण है यो सब कुछ छो थी रो है तो सोचने की जरूरत है यो सब कुछ सिर्फ इन करे थी रो है जो मुल्क जो वजीर आजम इन वक्त अकवाम मुतहदा में आए उते पंजवी तारीख वो खिताब कंदो सलामती काउंसिल के उनका पोए ता दिसो ता जेको उनका अग में भी जेका पूरो सिनेरियो रहो पूरे इंटरनेशनली जे तरीके सा असा इंडिया के आइसोलेट कयो से पूरी दुनिया में पान मरकज निगाह रहा से दुनिया की सफे अवल की कौम में पाकिस्तान की कौम के बिहारियो वो ये सब शयूं पाड़ेसरी मुल्क के लिए तमाम घणो खतरो हुयूं उनके नफरियो वणन लाजमी गाल है वो इंसर्जेंसी तो आए उनकी तरफा उनका प्रॉक्सीज इतने पाकिस्तान के अंदरूनी डिस्टेबिलाइज करण के लिए तैयार वेठा तो पाकिस्तान के इन वक्त लाजमी गाल है को थ्रेट है जैसे कर पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान जहा रियासती इदारा हुकूमत पाकिस्तान उन्हें सा बिल्कुल मुकाबलो कर तैयार है असा कें कीमत से उनके इजाजत न डींदे तो वो पाकिस्तान के कैपिटल से कहा कर
0: इंटरनेशनल इमेज जिक्र किया पा तो हुकूमत ये खबरू इंटरनेशनल मीडिया के लिए तैयार करे पी कंटेनर सिटी इस्लामाबाद थी चुको है एमपीओ तहत गिरफ्तारियों थियन पयूं गवर्नर राज खबरू धमकियों सामू अचन पयूं नवन सूबन की मुहिम सामू अचे पी दहशतगर्दी वा मामला पैंजी जाए थे मईशत जो हाल खराब है। गौरी साहब गुज़िश्ता रोज आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे जब मौलाना साहब ने यह कहा कि खुद से अब हाथ से हम देख रहे हैं कि खुद ही लोगों को अवाम को बागी बनाया जा रहा है पार्टियों का जिक्र भी उन्होंने किया कि बागी बनाया जा रही है यह हुकूमत और इसके जो नतायज होंगे उनका भी उन्होंने जिक्र किया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो ये सारी सूरतयाल बनी है अग्री करेंगे जो राजा साहब कह रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ा अहम मामला है हर तरफ से हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं और साथ साथ इस वक्त वजीर आजम साहब भी आलमी अमन की बहाली में मसरूफ हैं और ऐसे वक्त में इस किस्म की कोशिश हुकूमत ये जवाब समझती है कि ये जवाब मौजूद है कि पीटीआई को हर हाल में आने से रोका जाए क्या कहेंगे आप?
2: देखिए ये पीटीआई का राइट है उसे पाकिस्तान के आईन में यह हक हासिल है कि वह एहतजाज कर सकती है किसी भी सियासी जमात को यह हक हासिल है कि वह एहतजाज कर सकती है फिर वो एक सूबे में हुक्मरान पार्टी है उसके साथ बात की जा सकती है उनको एंगेज किया जा सकता है लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये जो तासर दिया जा रहा है क्या वजीर आजम जिस वक्त अमन की बात वहां कर रहे होंगे क्या उस वक्त वहां के चैनल हमारे इस्लामाबाद की जो तस्वीरें नहीं चला रहे होंगे जो चारों तरफ यहाँ पर इस वक्त कंटेनर लगे हुए हैं मैं खुद इस्लामाबाद में बैठा हूँ हम लोग अपने घरों में बंद बैठे हुए हैं या खौफ की फजादारी है लोग इस्लामाबाद खाली करना चाहते हैं कहा 22 तारीख आज 22 है आज से तमाम तालीमी अदारे बंद कर दिए गए हैं 27 का ऐलान है आज 5 दिन पहले आप

0: क्या रात को आप कदकोट कश्मोर का सफर कर सकते हैं शिकारपुर से? तो ये किसने देना है अमनोवान? तो हुकूमत ने देना है ना, चाहे वफाकी हो या सूबाई हो। हुकूमत अपनी नाकामियों पे पर्दा इस तरह ना डाले, अपोजिशन को अपोजिशन समझे। आप मैं ये समझता हूँ तो हुकूमत इस तरह ना करे, इस तरह करने से देखा हमारे हाथ से ये हुआ है और ये आपने देखा होगा। हमने जब से अपना होश संभाला है हमने यही देखा है कि जो आज के हुक्मरान होते हैं कल के कैदी होते हैं। ये हमेशा से हुआ। मियां साहब कितनी दफा जेल में गए हैं, किस तरह से उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, जहाजों में बांध के और बैठा के, किस तरह जरदारी साहब ने कितना अरसा जेल में गुजारी है। आज तो हम उनके खिलाफ चाहे 10 बंदे मार दें, हम उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। इस हुकूमत ने जिसने कल पकड़ के गिरेबान से उसको घसीटना था, आज उनको इतना पास तैयार कर दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता।
1: वो तो और इसको भी टारगेट करने की एक रवायत चल पड़ी।
0: मैं पूरी दुनिया में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस देखिये हम लोग तो पिछले दौर में हुआ है, फिलहाल तातपुर साहबा के साथ क्या हुआ, मैं पीडीएम के इजलासों में बैठता रहा हूँ, फिलहाल तातपुर साहबा को किस तरह से पकड़ा गया, फिर इसी तरह मरियम नवाज के साथ जो कुछ हुआ हमको अच्छा फेल नहीं समझते। लेकिन जो कुछ कल यहाँ हुआ और यहाँ पर जो इमरान शाह की बहनों को जिस तरह अरेस्ट किया गया, पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ, इंटरनेशनल मीडिया को आप देखिए आपका मजाक बना हुआ है। आप तो कह रहे हैं हम सिक्योरिटी दे रहे, मजाक आपका बना हुआ है। मैं समझता हूँ हुकूमत शायद जो हमारी हुकूमत है जो पीपल्स पार्टी जिसके साथ शामिल है हुकूमत में, वो को ये कहते हैं हमारे दोस्त कम हुकूमत में शामिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत कहीं और खड़ी हुई है, मामला कहीं और तरफ है। एक मिनिस्टर उठता है वो खड़ा होकर बैठता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना अभी तक हुकूमत की वफाकी हुकूमत की तरफ से बात आई है, ना किसी भी सूबे की तरफ से बात आई है, और वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूबे तो हर हाल में बनेंगे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत तो थर्ड एम्पायर की है। हुकूमत जो है इस वक्त तक जो भी आप दिफा करने के लिए मेरे मिनिस्टर बाकी हैं, दिफा करने के लिए मेरे एडवाइजर बाकी हैं, ये बेचारे बैठ के दिफा करते हैं और मोहसिन नकवी जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें टीवी पे करके चले जाते हैं। और उनके मेजबान कौन होते हैं, उनके साथ कौन बैठे होते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सहाफियों को कौन दावत देता है, कौन बुलवाता है, ये हम सब पूरा मुल्क जानता है। ये सोशल मीडिया का दौर है, वो पुराना दौर नहीं है।
1: लेकिन अब गौरी साहब यहाँ से मामला आगे कैसे बढ़ेगा, किस तरह से ये सियासी दर्जा हरारत कम होगा? इस जमन में कुछ राबते भी हुए, गुज़िश्ता रोज मौलाना साहब ने अदम एतमाद की तहरीक का भी जिक्र किया कि अगर पीपल्स पार्टी उस हवाले से आगे आती है तो फिर यहाँ से मामला कुछ टर्न ले सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा ने भी मुझे ज्वाइन किया है। शाहिदा रहमानी साहब आपको भी वेलकम कहूंगी इस प्रोग्राम में। असलम गौरी साहब, राज अंसारी साहब और सरबुलंद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी आप, मौलाना साहब ये समझते हैं कि हुकूमत खुद से बागी बना रही है इस तरह से जो इकदाम लिए गए हैं, पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड करती है? दो के हमने देखा कि जमायत इस्लामी का एहतजाज हो या पीटीआई के जो बुनियादी मुतालबात का मामला हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती हुई नजर आई, लेकिन अभी तक हुकूमत के साथ आप कहां तक खड़े हैं? ये जो अभी सारे इकदाम लिए जा रहे हैं, जो जवाब पेश किए जा रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत की मजबूरी भी है और हालात का तकाजा भी है कि हुकूमत ऐसे इकदाम ले, पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करती है?
2: बहुत शुक्रिया नाजिया। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए आपने बात की एहतजाज की, और एहतजाज मैं समझती हूँ जमहूरियत में जमहूरी हुकूमतों में एहतजाज करने का हक होता है, लेकिन उनके भी कुछ असूल और जवाबित होते हैं कानून के दायरे में रहते हुए। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो मैं समझती हूँ तकरीबन अभी ये रिसेंटली जो 2008 से हम कंटिन्यू कभी गवर्नमेंट में कभी अपोजिशन में पार्लियामानी निजाम चल रहा, लेकिन इससे पहले आपने देखा कि हमने जनाजिया के खिलाफ भी स्ट्रगल की। उस वक्त तो किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेना जुर्म था, अगर कोई नाम लेता था तो उसे कोड़े लगते थे, फांसियां लगी। आपने देखा हमारी क्यादत फांसी पे बेगुनाह फांसी पे लटक गई और हमारे कई वर्कर्स फांसी पे लटकाए गए, उन्हें शाहिद किला की और अटक की और कराची मतलब डिफरेंट पूरे पाकिस्तान जेलों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स से भरे हुए थे और 70,000 तकरीबन वर्कर्स ने कोड़े खाए, कैदोबंद की सौते बर्दाश्त की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया जाता है और उनकी फैमिली को बंद किया हुआ था जेलों में और शक्ल तक देखने नहीं थी। ये सब हमने मजालिम बर्दाश्त किए और एक तवील दास्तान है 11 साल ही। फिर जनरल मुशर्रफ का जब एरा आया तो आपने देखा उस वक्त भी हमने एक तवील जद्दोजहद की, लेकिन आपने देखा कि हमने कभी इदारों पर हमला नहीं किया, कभी हम इस्लामाबाद पे हमला नहीं किया। बिल्कुल जमात इस्लामी भी एक लॉन्ग मार्च कर रही थी।

0: पीपल्स पार्टी ने कहा कि जमात इस्लामी की जब भी होता है वो कभी पुरतशद्दुद नहीं होता, उनके जो भी मुजाहरे होते हैं पुरअम तौर पे अभी उन्होंने पूरे पाकिस्तान में किए, गवर्नर हाउसेस और आपने देखा कि मुख्तलिफ सेम हाउसेस के सामने रेड जोन में, लेकिन कोई भी एक गमला नहीं टूटा। इसी तरह इनके पीटीआई के दौर में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और मौलाना सब ने लॉन्ग मार्च किया और देखा कि कराची से लेके यहाँ तक जो है इस्लामाबाद तक कोई गमला नहीं टूटा, और जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचे हमने फौरी तौर पर जो है हमारे चेयरमैन ने अपना लॉन्ग मार्च का इख्तिताम किया और फिर पार्लिमानी जद्दोजहद के थ्रू।
1: शहर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, माजी को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब जो यहाँ पर जो मामला रुका हुआ है, पीटीआई तो ये कह रही है कि अगर सिरे से अदालती अहकामात पर अमल हो जाता तो शायद ये नौबत यहाँ तक ना पहुंचती, और साथ साथ अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, आप नहीं समझती कि इस बढ़े हुए सियासी टेम्परेचर को मजीद बढ़ाने में हुकूमती वुजरा के बयानात, उनकी वार्निंग्स, उनका भी हिस्सा रहा है?
0: देखिए, मैं समझती हूँ कि कितने बड़े बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008-13, और आपने देखा था कि उस वक्त भी बड़े बड़े मुजाहरे हुए, और उस वक्त जब ताहिर कादरी साहब और सब लेकर एक बहुत बड़ा धरना यहाँ रेड जोन में हुआ, तो 8 दिन पीपल्स पार्टी के वुजरा उन्हें ठंडा करते रहे, उन्हें समझाते रहे, और उसके बाद वो पुरअम तरीके से घरों में को लौट गए। तो होना तो ये चाहिए कि हुकूमत चूंकि इक्तदार में है और हमेशा उनका लहजा नर्म होना चाहिए, अपोजिशन से निपटने के लिए डायलॉग मुजाकरात बहुत जरूरी होते हैं, और उनकी मुतालबात को मानने के लिए तमाम हुकूमत अपने आप में, याद होगा पीपल्स पार्टी ये सब कुछ करके दिखा चुकी है। हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, कोई सियासी असीर नहीं था,
1: तो इस वक्त पीपल्स पार्टी पुल का किरदार अदा करते हुए क्यों नहीं नजर आ रही? सारे माहौल में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? कई अपोजिशन वाले भी सोच पूछ रहे हैं, हुकूमत भी ये सोच रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम ना तो हुकूमत के साथ हैं और अपोजिशन की हिमायत कर रहे हैं लेकिन उनके कैंप में शामिल नहीं है, तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर खड़ी कहाँ पर है, उसका किरदार क्यों नहीं नजर आ रहा है सारी सूरत हाल में?
0: देखिए, आपको कैसे नहीं नजर आ रहा, पीपल्स पार्टी की वजह से इस मुल्क में जमहूरियत चल रही है, पीपल्स पार्टी की वजह से इस मुल्क में पार्लियामेंट चल रही है, और आज नहीं, 2013 के इलेक्शन पे हमें तहफ़ुज़ात थे, 18 में आरटीएस बैठाया गया और तमाम बड़ी जमातें पार्लियामेंट छोड़कर एहतजाज पे जा रही थी, जेयूआई पीएमएलएन, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हमें पार्लियामेंट में आना है, यहाँ बैठ के मसाइल को हल करना है, और जब 22-23 के अंदर जब तमाम जमातें इस्तीफे देके बाहर जा रही थी, जब भी पीपल्स पार्टी ने रोका और पार्लियामानी तरीके
1: से बात बताया ना, शायद ऐसा मुझे आगे भी बढ़ना है। आज
0: तारीख हमारे पास अनाजिया, तारीख हमारे पास इसलिए होती है कि हम तारीख से सबक सीखें, और मैं यही बताना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर आज भी पीपल्स पार्टी बिल्कुल आपने देखा कि हम जो है कैबिनेट का पार्ट नहीं है, और हुकूमत अगर कहती है और हुकूमत अगर हमें दावत देती है कि जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जो है वो इसमें रास्ता दिखाए। आपको याद होगा कि जब 2014 के धरने हुए तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को सदर आसिफ अली जरदारी साहब को लेने गए और पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन के साथ मुजाकरात किए, और हमने उस धरने को में बड़ा अहम किरदार अदा किया जमहूरियत को बचाने में। तो पीपल्स पार्टी आज भी जमहूरियत के खातिर मुल्क में पार्लियामान के खातिर मुल्क में आइन की बालादस्ती के खातिर अगर हुकूमत के साथ बैठी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जो है हम बिल्कुल कहते हैं, हम आज भी मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा कि धरने, लॉन्ग मार्च, एहतजाज ये अपोजिशन का और तमाम जमातों का हक है और उन्हें उनको स्पेस देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के जो वुजरा है जिस तरीके की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं मैं समझती हूँ कि वो नामुनासिब है, ये जलती पे तेल का काम कर रही है, इन्हें चाहिए कि अपने रवैयों में नरमी लाएं, मुजाकरात का रास्ता ढूंढे ताकि मुल्क को मजीद सियासी इंतशार से और इस तरह की जो गर्मा गर्मी गहमा गहमी हो रही इससे बचा जा सके।
1: ठीक, शहर साहब आपने कहा कि अगर हुकूमत राबता करती है तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपना किरदार अदा करेगी। सरबुल खान साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं?
2: जी बिल्कुल मौजूद।
1: सरबुल खान साहब क्या कहेंगे, आपने हुकूमत का मौकिफ भी सुना, जेयूआई का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई, अब हुकूमत का ये कहना है कि पीटीआई ने खुद से ये जवाब दे दिया, सोमनाथ बना देंगे इस्लामाबाद को, उससे कहानी शुरू हुई, फिर यूटर्न लिया गया ये, लेकिन ये जो इश्तियाल अंगेज बयान सामने आए, इन बयान ने हुकूमत का जो जवाब था इस सारे एहतजाज को रोकने का उसको मजीद मजबूत कर दिया है।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका नाजिया। देखिए एक्चुअल बात जो शाहिदा रहमानी साहब ने शुरू में जो बात की थी उसका तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो दूसरे हाफ में उन्होंने बात की है एक्चुअल बात ही यही है कि जो हुकूमती वज़रा है, हुकूमती जो अरकान है, उस तरह के बयानात और इस तरह के मामला कर रहे हैं कि फ्रेंड मुज़ाकरात की छूट गई है और आप इनके साथ निकलेंगे और इनको वापस नहीं जाने देंगे और ये वो। भाई हम पुरमन लोग हैं, हम एहतजाज करने आ रहे हैं, हमसे पहले तमाम जमातें आ चुकी हैं, पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है, नून लीग वाले भी आ चुके हैं।
1: सलमान साहब याद माजी अजाब है यार, वो बार बार माजी का हवाला दे रहे हैं कि पीटीआई का माजी उनके लिए मसले पैदा कर रहा है।
2: माजी कोई मसले पैदा नहीं कर रहा, ये मारते भी खुद हैं और रोते भी खुद हैं। इन्होंने हमारे नवंबर 26 को इन्होंने हमारे निहत्ते कारकुनों पे गोलियां चलाई और मारा भी और उल्टा ये हमें दहशतगर्द कहना चाह रहे हैं। मैं तो इस रवैये में बड़ा अफसोस कर रहा हूं कि पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिकल जमात जिसकी गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक, खैबर सिंध पूरे चारों पांचों सूबों में जो एक मकबूल तरीन जमात है, जो फॉर्म 45 के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी जमात, 180 से ज्यादा कौमी असम्बली की सीटें हमने जीती, हमारा मैंडेट पे डाका लगा, ये फॉर्म 47 के 5,000 वोट लेकर आए हुए बैठे हुए हैं और ये बात भी कर रहे हैं। थोड़ी सी अखलाकी जरूरत होती तो मुझे बहुत खुशी होती पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। आप मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद जो है वो किसी एक पार्टी का है या किसी एक फर्द का है? इस्लामाबाद सबका है, पाकिस्तान सबका है, तमाम सूबे हमारे हैं और तमाम कौमें हमारी हैं या ये तमाम इदारे हमारे हैं। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है, हम मुतालबे क्या कर रहे हैं, हमारा मुतालबा बड़ा है, मैं हम कहते हैं कि हमारे केसेस लगाए जाएं, अदालत को की आजादी हो, खुले वो फैसले करें, आईन और कानून की अमलदारी हो। सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है और वो कोई मानता ही नहीं है, उसको कैसे रद्दी की टोकरे में फेंका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है, हाई कोर्ट उस पर कोई और व्यू देती है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक दिन पहले उस पर वो उनको बुलाती है। तो ये मजाक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता, हमारे केसेस नहीं लगाए जाते। 25-25 दफा हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं इसी एक केस को लेकर। आप बताएं किस कैदी को इंसानी हकूक के नाते उनके इलाज के जो सहूलत है वो नहीं दी गई है? खुद तो नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर चले गए और 10 साल के लिए मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके बाहर चले गए। हम तो वो नहीं बनना चाहते ना, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, और ये आके हमें ये बात भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है हमें सबको बताए, जब अलजुल्फिकार बनाई थी तो किसने बनाई थी? और वो जो जदोजहद की बात कर रहे हैं, जब बिलावल साहब आए थे वहां इस्लामाबाद तो हमने वेलकम किया था, सहूलत दी थी हमने, हमने कहा आए आपका शहर है, आप करें अपना प्रोटेस्ट।
1: तो अभी नवाज शरीफ अभी कुछ रोज कबल ही आए थे यहाँ पर वजीर आला केपी सिंध के अंदर,
2: वजीर आला साहब आए थे
1: जी, मौका दिया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको,
2: उन्होंने हैदराबाद से लेकर कराची तक तमाम सड़कें खोद दी और सीएम के पीके को रात 4 बजे तक कराची नहीं आने दिया। जो घंटा दो जो सफर 2 घंटे में था वो 8 घंटे 7-8 घंटे में वो करके रात के 3-4 बजे पहुंचे, हमें हैदराबाद और कराची के इवेंट्स जो है पोस्टपोन करना पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, हम सबको पता है कि ये 12वें और 13वें खिलाड़ी हैं, इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है खेलने का, खेल कोई और रहा है, ये कठपुतली है, सिर्फ आके बयानात दे रहे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं। जैसे मेरे भाई गौरी साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने, बिल्कुल जबरदस्त बात की, और एन यही सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में कि जो जो इस वक्त मामलात हैं, अगर बताएं जी हम कोई गलत मुतालबा कर रहे हैं, आप हमसे डायलॉग नहीं कर रहे हैं, सियासी सियासत में तो बातचीत होती है, बातचीत से जरिए
1: मसले जो कमेटी का मुतालबा किया था राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने, उस पर जवाब दिया है तलाल साहब ने कि ऑलरेडी एक कमेटी मौजूद है इन मुजाकरात के हवाले से। बाकी जो आप कह रहे हैं कि बड़े बुनियादी से मुतालबात हैं, जवाब लेते हैं राजा अंसारी साहब से। राजा अंसारी साहब चवंदो ॾाढा बुनियादी ॻाल्हि थे पई थे सरबुलंद खान साहब जी, त बुनियादी मुतालबा आहिनि, हुकूमत पहिरियां ई हुकूमत अमल करे छॾी आहे, अदालती हुकूमत ते त ही मामिलो अॼु हिन नेस ताईं पहुचे ई कोन आहे।
3: ॾिसो सभ खां पहिरीं त मुज़ाकरात जी ॻाल्हि पई हले, उहो बयानियूं काॾे वियो त ही चोर आहिनि, ही डाकू आहिनि, हिननि सां मुज़ाकरात न कंदासीं, TLP सां कंदासीं, हिननि सां न कंदासीं, दहशतगर्दनि सां वेहंदासीं मुज़ाकरात में, पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सां न वेहंदासीं। इहो बयानिया कंहिंजो हुयो? मुंहिंजो त कोन हुयो।
1: अॼु हू ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहिनि, वज़ीर आज़म खां मुतालबो बि कनि पिया त कमेटी जोड़ियो।
3: चार ॾींहं अॻु में ताईं मोहतरम वज़ीर आज़म मुज़ाकरात जी दावत ॾे पियो न?
1: जी
3: मुज़ाकरात चए पियो त मुज़ाकरात कंदासीं। हाणे ही पाण पिया चवनि त असल ताक़त ॿिए जे हथ में आहे, पोइ असां सां मुज़ाकरात करे छा कंदा? हिकिड़ो मौक़ो त वठनि, हिकिड़ो मौक़ो वठनि न। जॾहिं हू चवनि था त इख़्तियारात कंहिं ॿिए वटि आहिनि, ॿी कुवत वटि इख़्तियारात आहिनि, पोइ मुज़ाकरात असां सां छो कंदा? इन करे ही पाण बेसिकली हालत इहा आहे त हिननि वटि पाण वटि को इख़्तियार न आहे मुज़ाकरात करण जो। ही जेल में वेठल शख़्स खां अलावा ॿिए कंहिंजे ॿी का हिननि जी सियासत ई कोन्हे। इन करे ही बुनियादी तौर ते असांखे हिन वक़्तु चयो वञे थो त बाबा तव्हां जमहूरी रिवायतूं ॾेखारियो, छा कयूं? वरी 26 नवंबर थियण ॾियूं, छा कयूं? PTI ते हमला थियण ॾियूं, छा पार्लियामेंट जी भितियुनि ते शलवारूं टंगण ॾियूं, छा कयूं? पुलिस वारनि जा वार पटनि में उन्हनि खे रोडनि ते गहलनि, इहो सभु कुझु मंज़र असां
1: पीपल्स पार्टी मशवरो ॾे पई त असीं अॻियां, जेकॾहिं असांखे चवंदा त पोइ असीं को पुल जो किरदार अदा करे सघूं था। पीपल्स पार्टी खे बि शामिल न पिया कयो, ऑन बोर्ड न पिया वठो?
3: पीपल्स पार्टी असांजी हुकूमत में शामिल आहे, तमाम आईनी ज़िमेदारियूं पीपल्स पार्टी वटि आहिनि। पीपल्स पार्टी खे पंहिंजो जमहूरी रोल अदा करण खां कंहिं बि कोन रोकियो आहे। पर हिन वक़्तु मसलो इहो आहे, अॼु असांखे माज़ी यादि जराइण वारा या जेके चवनि था त वज़ीर आज़म आहे उनखे को सहूलियतूं न आहिनि, ही उहे ॾींहं विसरी विया जॾहिं अमरीका में बीह करे ॾाढीअ जो इशारो करे खान साहब चवे पियो त मूंखे कड़ा पहुचण ॾियो पाकिस्तान मां, नवाज़ शरीफ जी TV लाहींदुसि, AC लाहींदुसि। को शर्म आहे हिननि खे? का गैरत आहे? उन वक़्तु पंहिंजो माज़ी बिल्कुलु विसारे छॾियो अथऊं। मां त सम्झा थो त इहो कुझु बि न आहे, सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ मकाफ़ात अमल आहे जेको हिननि सां थी रहियो आहे। अॼु मौलाना साहब जी तमामु वॾी दिलि आहे फज़लुर रहमान साहब जी, हिननि सां गॾु दफ़ा थो करे हिननि जो। मौलाना साहब उहे ॾींहं विसारे छॾिया जॾहिं कंटेनरनि ते बीह करे ऐं मौलाना साहब खे डीज़ल खां अलावा ॿियो कुझु लफ़्ज़ न चवंदा हुया, ओहे तोहे करे ॻाल्हाईंदा हुया एॾे वॾे आलम दीन खे। हिननि खे उहे ॻाल्हियूं विसरी वियूं आहिनि। ही कंहिंजी बि इज़त सलामत न हुई। अॼु जंहिंखे अपोज़िशन लीडर कयो आहे महमूद खान अफ़ज़ल जूं चादरूं पाए करे इमरान खान नकलूं कंदो हुयो, यानी इख़लाक खां किरियल हरकत हिननि कई। अॼु उहे जमहूरी कुवतूं हिननि सां गॾु बीठियूं आहिनि। मां सम्झा थो हिननि खे पंहिंजा रवैया तब्दील करणा पवंदा, ऐं जेको हिननि जो जेको माज़ी आहे, जेको ॿुधाए थो त ही क्रिमिनल एलिमेंट हथियारबंद माण्हू वठी करे हिकिड़े पूरे सूबे जी पुलिस वठी करे ऐं कैपिटल ते दारुल हुकूमत ते जेका इहे का कनि था, हमला आवर थियनि था, हिननि खे पंहिंजो इहो सॼो शयूं रीविज़िट करणियूं पवंदियूं। हाणे त ही चवनि था न त असां ताबेदार कंदासीं, जिन वटि इख़्तियार आहे उहे जेकॾहिं असांजी ॻाल्हि ॿुधनि, असां सां वेहनि, असां ताबेदारी कंदासीं। ही वरी पर हिननि जी हाणे ताबेदारी वठण लाइ को तयारु न आहे। हिक दफ़ो ॿीहर ताबेदार थी करे ऐं Form 47 जो असांखे तानो ॾियनि था, पर ही ताबेदारीअ जे हवाले सां जिन फॉर्मनि ते ही 2018 में नवाज़ शरीफ जो मैंडेट चोरी करे इक़्तदार ते क़ाबिज़ थिया हुया, हाणे ही चवनि था असांखे वरी कहिड़ो रस्तो मिले, असां वरी कंहिं ॿिए जो मैंडेट चोरी करे इक़्तदार ते क़ाबिज़ थियूं। हाणे उहे ॾींहं हलिया विया, हाणे तव्हांखे वरी उहो वारो न मिलंदो, वरी इन कंहिं क़िस्म जो पाकिस्तान जे मथां को तजुर्बो या एडवेंचर कोन थींदो। हाणे तव्हांजे ख़िलाफ़ एक्शन थींदो, छो जो तव्हां पाकिस्तान जा कदार आहियो, मुल्क जा कदार आहियो, ऐं मुल्क जे मथां हथियारबंद माण्हू वठी करे उनजे कैपिटल ते हमला।
1: जवाब त वठो, माज़ी त हर पार्टी जो मौजूदु आहे, हुते ज़िक्र बि थिए पियो त माज़ी खां कुझु सिखण जी ज़रूरत आहे। गौरी साहब, हुकूमत ने त बड़ो वाज़े कर दिया है और लाइन भी ड्रॉ कर दी है कि कहां खड़ा करना है इनको और कैसे डील करना है, और वो हुकूमत बड़ा कैटेगोरिकली कह रही है कि एक्शन होगा, अब इसके अलावा कोई हल नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बचा। क्या मंजरनामा आप जुड़ते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों का?
4: जी, मैं एक छोटी सी बात थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ।
1: जी
4: बहुत बड़ा शायद रबानी साहब ने कोई तारीफ की बातें की है MRD की तारीख की, दूसरी चीज की MRD की तारीख में जहाँ पीपल्स पार्टी थी वहां JUID ने बराबर में कोड़े खाए थे। मौलाना फजल रहमान साहब 1980 में जब पहली दफा सियासत में बात हुए थे तो MRD की तारीख थी, और मौलाना फजल रहमान साहब ने उस तारीख में पहली दफा अपनी गिरफ्तारी दी थी। और जब पीपल्स पार्टी की क्यादत या तो गिरफ्तार हो गई थी या अंडरग्राउंड चली गई थी, तो मौलाना शाह अमरूठी साहब जो शिकारपुर से है वो MRD के सदर बने थे और पूरी तहरीक उन्होंने चलाई। तो फिर थोड़ा सा तारीखी बात थी, मैंने कहा इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं। तो जमहूरियत के लिए कहीं ना कहीं सबकी कुर्बानियां हैं, और जो जमहूरी पार्टियां हैं, हम इसीलिए बात करते हैं पीपल्स पार्टी से एहतराम का रिश्ता इसलिए रखते हैं कि कहीं ना कहीं गलतियां भी हम ही करते हैं, गलतियां सियासतदान करते हैं। जो 28वीं में पीपल्स पार्टी ने गलती की है, शायद वो उस गलती पे मुहतरमा बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार भुट्टो साहब की रूहों को भी तस्कीन नहीं मिली होगी। तो ये गलतियां भी पीपल्स पार्टी हमारी हम सियासी जमातें करते हैं, लेकिन ये जो चीज हम कर रहे हैं, आज हम जो कर रहे हैं, जिस तरीके से पीटीआई से ये डबरुहा सिमा है, जिस तरह से पीटीआई को ये डील कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल में क्या अपने लिए उन्होंने सोच लिया कि हमें इसी तरह हमारे साथ भी यही होगा? क्या आपको एक सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास किया, अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे आप अमल दरामद करते थे, उस शख्स को जो साबिक वजीर आजम था, आप भी तो इलाज कराने के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए थे ना जी? अगर एक शख्स जो साबिक वजीर आजम था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उसको शिफा इंटरनेशनल उसका इलाज कराया जाए, तो उसको क्यों नहीं देखे गए? अगर वो आप अमल दरामद कर देते, जो आज की सूरत क्रिएट ना होती। मैं हमेशा कहा करता हूँ, हमारे बरखुदार अच्छी बात कर रहे थे कि खान साहब किस दौर में हमारे बारे में कोई अच्छे अल्फाज नहीं कहते थे, लेकिन आज आपकी मेहरबानी से हम और खान साहब की पार्टी एक स्टेज पे बैठ गई है, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ गई है आपके रवैयों की वजह से। अगर आप अपने रवैये जमहूरी रखते और ये शुरू ना करते, तो आज और हम पीटे यहाँ तक ना पहुंचे। आज हम एक टेबल पे
1: अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे? कल मौलाना साहब ने भी जिक्र किया अदम एतमाद का, और उसके लिए कहा कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट उसके लिए दरकार होगी। अभी आपने डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा को भी सुना, वो ये कहती हैं कि हम अभी भी अपना कोई किरदार इस हुकूमत के कॉन्टेस्ट में अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हुकूमत हमें इस हवाले से हमसे कोई मशावरत करेगी। अभी जेयूआई किस मूड में है? कुछ तो चीजें कल वाजे हुई, लेकिन अब पीपल्स पार्टी तो इंतजार में है, जेयूआई इंतजार करेगी पीपल्स पार्टी का या खुद से बढ़कर इनिशिएट करेगी, इनिशिएट लेगी? गौरी साहब जी, गौरी साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? असम गौरी साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नाज़रीन असलम गौरी साहब से रब्तो मुंग जाते थे, कोशिश करूँ तरफ से रब्तो बहालते। शाहिदा रहमानी साहब, यही सवाल आपके सामने रखूंगी।
4: आवाम में इश्तियाल है, आवाम जज्बाती है, आवाम गुस्से में है। अगर हुकूमत इसी तरह आवाम को जज्बाती करेगी तो मामला बढ़ेंगे। हमारे और पीटीआई के दरमियान में बहुत फासले थे, हुकूमती रवैये ने हमें करीब कर दिया। और
1: पीपल्स पार्टी के साथ ही बताइएगा, कल आपने जिक्र किया आदमी
4: पीपल्स पार्टी के बारे में एक क्वेश्चन हुआ था, पीपल्स पार्टी के बारे में एक क्वेश्चन हुआ था, उसमें मौला साहब ने यह कहा था कि अदम एतमाद की तरह उन्होंने ये कहा था कि अदम एतमाद लाएंगे इस हुकूमत के खिलाफ, तो मौला साहब ने यह फरमाया था कि हम अदम एतमाद उसी सूरत में इस हुकूमत के सामने लाएंगे अगर पीपल्स पार्टी चाहेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो उसको सपोर्ट की हुई है। जब तक पीपल्स पार्टी की सपोर्ट उसको हासिल है, तहरीके अदम एतमाद यहाँ नहीं आ सकती। तो ये एक सवाल था जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी चाहेगी तो फिर हम मिलकर
1: एतमाद। लेकिन पीपल्स पार्टी में तो नाला तो है हुकूमती पॉलिसियों से। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब क्या कहेंगी आप हुकूमती पॉलिसियों से पीपल्स पार्टी नाला भी है, उसका इजहार करते हुए भी नजर आती है, अपोजिशन के एहतजाज को सपोर्ट करते हुए भी नजर आती है, लेकिन जिस तरह से राजा साहब ने कहा कि फिर अपना कोई जमहूरी किरदार अदा करने के लिए पीपल्स पार्टी किसका इंतजार कर रही है, क्यों दावत का इंतजार कर रही है?
0: नाजिया देखें, सबसे पहली बात तो ये जो अभी कहा पीटीआई के साहब ने कि जिस हम जो है अल-ज़ुल्फ़िकार, तो पीपल्स पार्टी ने ना तो कभी अल-ज़ुल्फ़िकार को ऑन किया, पीपल्स पार्टी ने जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखा। और जिस तरह अभी गौरी साहब ने भी कहा कि बिल्कुल उस वक्त तमाम पॉलिटिकल जमातें, हत्या कि वो लोग जो भुट्टो साहब की फांसी पे जिन्होंने मिठाइयां बांटी थी, जो उनके दुश्मन थे, उस वक्त के हालात को देखते हुए बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने तमाम को दरगुजर करते हुए आगे बढ़े थे, तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेकर चले थे। इसीलिए इसको एमआरडी की तहरीक कहा जाता है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ नहीं की थी, इसमें तमाम पॉलिटिकल जमातें शामिल थी और एक तवील स्ट्रगल थी, मैं समझती जिसकी नजीर नहीं मिलती। फिर एआरडी की तहरीक में भी तमाम पॉलिटिकल जमातें शामिल थी और हमने वो जद्दोजहद करके दिखाई। उसके बाद जो है जो बात हो रही है कि जी फॉर्म 47, तो आरटीएस सिस्टम किसने बैठाया था, कौन एम्पायर की उंगली का इंतजार करके किस तरीके से आए थे 2018 में, पूरी कौम जानती है। और हमने उस वक्त भी पार्लिमानी सिस्टम को डिरेल नहीं होने दिया, उस वक्त भी हमने मौलाना को भी उनकी जमात को चेयरमैन साहब ने राजी किया, पीएमएलएन को राजी किया और पार्लिमान में आके हम बैठे। और आपने देखा कि 2024-23 में जो कुछ हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, आज भी पीपल्स पार्टी अपना हर किरदार। देखिए हुकूमत की पॉलिसियों से बिल्कुल हम नाला है, एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल प्राइसेस देख लें, आपने कोई इंडस्ट्री का यूनिट लगाया नहीं, बल्कि यहां से जो है इंडस्ट्रीज बंद हो के आपकी बाहर चली गई है, आपकी बिजली महंगी है, बिजली के ऊपर जो डे बाय डे टैक्सेस इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, जो जिस तरीके से यूनिट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, बिजली की कीमतों को डबल किया जा रहा है, ये सारी चीजें हुकूमत की कारकर्दगी, इम्पोर्ट आपकी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट आपकी खत्म हो चुकी है, तो हुकूमत की कौन सी कारकर्दगी है जिसके ऊपर उसको सपोर्ट की जाए पीपल्स पार्टी नस्लों की सियासत की। और आज भी बिल्कुल देखे मुजाकरात के दरवाजे किसी से बंद नहीं होते, और जब जब भी जरूरत पड़ी पीपल्स पार्टी गई और पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को चाहे 27 अमेंडमेंट हो 28 हो हमने ऑन बोर्ड रखा, चेयरमैन साहब ने 12 तमाम ना सिर्फ मौलाना साहब बल्कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लिया, और बेनजीर साहब जहां तक रहे शहीद मोहतरमा साहिबा और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, ये उनका ख्वाब था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने और पीपल्स पार्टी ने उनके एजेंडे को तकमील किया, तो इसमें शर्मिंदा नहीं, वो खुश होंगे यकीनन कि आज देखें कि तमाम तर जितने भी आईनी मामलात हैं, जितने भी इस तरह की पेचीदा मामलात हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आईनी अदालतें जो हैं उसको लेकर चल रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास पहले ही इतना बर्डन था, तो हमारा तो यही था कि कोर्ट्स अपने अपने मुकदमा जो काफी काफी अरसे से सालों से जेरे अल्तवा हैं उनको निपटाए, और जहां तक पॉलिटिकल और आईनी जो केसेस हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स देख रही हैं, तो ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का ख्वाब था जिसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने पूरा किया।
1: सैफुल्लाह खान साहब क्या कहेंगे आप, हुकूमत की लाइन बड़ी वाजे है और आप...